सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पांचवीं तिथि तदनुसार 26 जून सन 2026 है। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन

0: बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले लीजिए सुनिए ज्ञान ज्योति।

ज्ञान ज्योति, अंधकार से घबराना कैसा जब हमारे पास विचारों की मशाल है। हर नया विचार जीवन में एक नई सुबह लेकर आता है। यहाँ अंधकार का मतलब सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, बल्कि ये जीवन की कठिनाइयों, निराशा, अज्ञानता, कन्फ्यूज़न या बुरे दौर का प्रतीक है। विचारों की मशाल हमारी सोच, सूझबूझ, ज्ञान और विवेक को दर्शाती है। जब हम एक ही जगह पर या पुरानी नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं तो जीवन थमा हुआ और उदास लगता है। लेकिन जैसे ही हमारे दिमाग में कोई नया रचनात्मक विचार आता है, कोई नया नज़रिया आता है, तो पूरी स्थिति ही बदल जाती है। एक नया विचार हमारे भीतर नई उम्मीद, नया उत्साह और ऊर्जा भर देता है। वो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह का सूरज रात के अंधेरे को खत्म करके पूरी दुनिया को एक नई शुरुआत देता है। ज्ञान ज्योति।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। माँ अक्षर अक्षर में तुम समाई, तुम ही सुर और तान हो, हाथ जोड़ कर करें वंदना, तुम ही हमारा मान हो।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार। 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका फोन मिला। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:30 पर रहेगा हिमाचल डायरी का आज का अंक। सुबह के 8:35 से लेकर 9:20 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:30 से लेकर 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 10:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता महफिले कव्वाली, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:15 पर। सुबह 10:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। 11 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। सुबह के 11:05 से लेकर दिन के 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दिन के 12 बजे कार्यक्रम रहेगा वनिता मंडल। सैनिकों के लिए कार्यक्रम रहेगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर समाचार आप सुनेंगे दोपहर 2:15 पर, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 3 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। युव मंच कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:05 पर। 6:30 पर कार्यक्रम रहेगा खेती बाड़ी। भक्ति संगीत आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रौन का गराएं दिया। रात्रि 8 बजे से लेकर 8:45 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे News@9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। 10:30 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम लेकर चांदनी रातें, और देर रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य वित्तीय स्वास्थ्यस्य विशेषाधिवक्त्रा नीदरलैंड देशस्य राज्ञा मैक्सिमा इत्यनया सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम सन्देशे श्रीमोदिना उक्तं यत् भारतस्य डिजिटल क्रान्तिः वित्तीय सेवानां सारल्यं कृत्वा कथं सामान्य जनानां जीवनस्य सुगमतां वर्धयति जनान् सशक्तं च करोति इत्यस्मिन् विषये द्वयोः मध्ये चर्चा अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः आरभ्य 29 दिनांक पर्यन्तं सेशल्स देशस्य राजनैतिक यात्रायां भविष्यति। सः तत्र सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती उत्सवे अतिथि रूपेण भागं ग्रहीष्यति। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा 15-2000 वर्षे सेशल्स देशस्य भ्रमणं कृतमासीत्। विदेश मंत्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकं दलं भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह उत्सवे भागं गृह्णीयात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, द्विपक्षीय सहकार्यस्य संपूर्ण समीक्षां करिष्यति, अथ च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचाराणां आदान प्रदानं करिष्यति। प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय सभायाः संबोधनं च करिष्यति, प्रवासी भारतीयैः सहापि संवादं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां नार्को समन्वय केन्द्रे दशम शीर्षस्तरीय संगोष्ठ्याः अध्यक्षतां करिष्यति। मादक द्रव्य नियन्त्रण अभिकरणद्वारा आयोजिते अस्मिन् सत्रे केन्द्रीय मन्त्रालयानां राज्य सर्वकाराणां मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन संस्थानां च प्रतिनिधयः एकत्रिताः भविष्यन्ति, येन देशे सर्वत्र मादक द्रव्य व्यापारस्य मादक द्रव्यस्य दुरुपयोगस्य च निवारणार्थं प्रयत्नानां समीक्षायाः सुदृढीकरणञ्च भविष्यति। अस्मिन् अवसरे श्रीशाहः मादकद्रव्य नियन्त्रण विषयम् अग्रिम कार्ययोजना प्रतिवेदनञ्च विमोचयिष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापारसन्धिः वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः समर्थनाय बलगुणकस्य कार्यं करिष्यति। ह्यः लंदन नगरे भारत वैश्विक मंचस्य यूके भारत सप्ताहं संबोधयन् श्री गोयलः अवदत् यत् यूनाइटेड किंगडम्स देशेन सह कृत मुक्त व्यापार संधिः अद्यावधि भारतस्य सर्वाधिक व्यापक संधिः वर्तते। अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोजितायाः नीट यूजी पुनः परीक्षायाः अस्थायी उत्तरकुञ्जीनां दर्शनार्थं प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं च राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः गवाक्षम् उद्घाटितं वर्तते। एनटीए इत्यनेन घोषितं यत् उत्तरकुञ्जिका www.neet.nta.in इत्यत्र उपलभ्यते। छात्राः अस्य मासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिप्रश्नं 200-रूप्यकशुल्कं दत्त्वा प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि आह्वानं स्वीकृतं भवति तर्हि एतत् शुल्कं पूर्णतया प्रतिदेयं वर्तते। सर्वकारेण औद्योगिक व्यापारिक द्रव अनिल इन्धनस्य आपूर्तिविषये सर्वाणि क्षेत्रीय प्रतिबन्धनानि दूरीकृत्य पश्चिम एशिया संकटात् पूर्वं प्रचलितस्तरं यावत् आपूर्तिं पुनः स्थापितं वर्तते। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः जॉर्ज रोड्रिगेज़ घोषितवान् यत् द्वयोः शक्तिशाली भूकंपयोः मध्ये मृतानां संख्या 88+100 अभवत्। सहस्रशः जनाः घातिताः, 200+ जनाः अद्यापि भूकंपग्रस्ते प्रदेशे एव परिलग्नाः सन्ति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। श्रोताओं, आपको तो पता ही है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सकारात्मक विचार के साथ, वो विचार जो हमें मानसिक शांति देता है। तो ये रहा आज का विचार। कल क्या हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आज आप क्या करेंगे ये पूरी तरह आपके हाथ में है। अपने आज को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि यही आपका कल लिखेगा। जो समय बीत चुका है उसमें जो गलतियां या नुकसान हुए हैं, हम उन्हें वापस जाकर बदल नहीं सकते। इसलिए पुरानी बातों पर पछतावा करके समय बर्बाद करना बेकार है। वर्तमान समय यानी कि आज का दिन पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हम आज मेहनत करके, अच्छी सोच रखकर और सही फैसले लेकर इस दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। हमारा आने वाला कल यानी कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। अगर हमारा आज बेहतर होगा तो हमारा भविष्य अपने आप सुरक्षित और खूबसूरत हो जाएगा। बीते हुए कल की चिंता छोड़िए, आज का पूरा फायदा उठाइए, ताकि आपका आने वाला कल शानदार हो सके। तो श्रोताओं, ये तो था सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में आज का विचार। चलिए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: बड़ी बहू,
5: ये तुम्हारे ना।
4: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
4: और ये
6: मेरी बड़ी के ना।
7: पर दादी,
5: हाँ,
7: आपके नाम?
8: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो।
7: क्या
8: RBI कहता है?
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
10: फ्यूचर की टेंशन और मुझे

0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
4: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी ये तुम्हारी ना,
5: और ये
6: मेरी गुड़िया की ना।
7: पर दादी आपके नाम?
8: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
7: शुभ शुभ बोलो क्या?
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। श्रोताओं, अगर हमें अपना वर्तमान ठीक करना है, भविष्य सुरक्षित करना है, तो ज़रूरी है इतिहास की जड़ों से जुड़े रहना। जी हाँ, अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज है 26 जून। आपको बता दें, आज के दिन मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व का जन्म हुआ था, साल 1888। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का जन्म हुआ था, साल 1918। बात करते हैं आज के दिन घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो आपको बता दें, चीन में पहला टूथब्रश सन 1498 में बनाया गया। पहली बार आधुनिक टूथब्रश के पहले मॉडल का चीन के एक राजा ने पेटेंट करवाया था आज के दिन। वहीं आज ही के दिन स्पेन और नीदरलैंड ने सन 1714 में व्यापार एवं शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन जर्मनी के कार्ल बेंज ने 1894 में गैस से चलने वाले ऑटो का अमेरिकी पेटेंट हासिल किया था। वहीं आज ही के दिन संवाद सिनेमा ने 1927 को अपना जीवन आरंभ किया। फिल्म निर्माण का काम आरंभ होने से ही निरंतर इस बात का प्रयास किया गया कि ऐसी फिल्में बनाई जाएं जिसमें संवाद भी हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिनलैंड ने 1941 में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था। वहीं आज ही के दिन नेल्सन मंडेला और 51 अन्य लोगों ने 1952 में दक्षिण अफ्रीका में कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। आज ही के दिन भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी। तो श्रोताओं, ये तो था आज का इतिहास सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। अब बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये गीत।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है,
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
8: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। श्रोताओं, अब साझा करते हैं आपके साथ कुछ ताजा तरीन खबरें। पहली खबर की बात करें तो लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला में दो लगातार और अत्यंत शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। वेनेजुएला में बुधवार शाम एक मिनट से कम के अंतराल पर 7.2 और 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप आए। दहशत के चलते लोग भागते नजर आए। जहां वेनेजुएला में आया भूकंप 126 सालों में सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इससे पहले साल 1900 में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के चलते मुख्य हवाई अड्डा सिमोन बोलिवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद करना पड़ा। वहीं अगली खबर की बात करें तो अमेरिका ईरान के बीच समझौते के तहत हॉर्मुज जल मार्ग खुलने का असर भारत में दिखने लगा है। जी हां, केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान लागू की गई वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति संबंधी अधिकतर पाबंदियां हटा दी हैं। अगली खबर की बात करें, केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए QR कोड आधारित प्रणाली का दायरा बढ़ा दिया है। जी हां, नए प्रावधानों के तहत टीके, कैंसर रोधी, सूक्ष्म जीव रोधी व मनः प्रभावी दवाइयों में क्विक रिस्पांस कोड अनिवार्य होगा। दवाओं की पैकेजिंग पर QR कोड होने से प्रमाणिकता जांच व सत्यापन आसान होगा। इससे लोग ये जान सकेंगे कि जिस दवा का सेवन कर रहे हैं वो नकली तो नहीं है। वहीं अगली खबर है, अलायंस एयर ने पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने 31 जुलाई तक कुल्लू और दिल्ली के बीच अपनी उड़ानों को हफ्ते के सातों दिन कर दिया है। इससे दिल्ली से आने वाले पर्यटकों और कुल्लू से जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक दिल्ली से भुंतर के बीच सप्ताह में 5 दिन ही उड़ानें हो रही थी, अब उड़ानों को रोजाना कर दिया गया है। तो श्रोताओं, ये तो थी आज की कुछ ताजा तरीन खबरें। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर कार्यक्रम सजीव फोन इन, आपका फोन मिला।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपका फोन मिला कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी हाँ श्रोताओं, ये कार्यक्रम है जिसमें आप हमें फोन करते हैं, अपनी राय, अपने विचार हमारे कार्यक्रमों से संबंधित हमारे साथ साझा करते हैं। तो भी देर नहीं करेंगे, आप सभी श्रोताओं को बता देते हैं हमारे स्टूडियो का फोन नंबर है 2231 22, यानी कि 2231 22, एरिया कोड है 01972 यानी कि 01972। तो मिलाइए अपना फोन

0: और बताइए क्या है आपकी राय। आपका फोन मिला, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो,
1: से शांति स्वरूप शर्मा बोल रहा हूँ मैडम।
2: जी नमस्कार। शांति स्वरूप जी, क्या हाल है तुम्हारे? हाँ
1: बस मेरे ठीक हैं जी।
2: जी,
1: मैं
2: सुना
1: तुम्हारे
2: दे आंदे
1: प्रोग्राम में,
2: कार्यक्रम।
1: हाँ जी हाँ जी, आकाशवाणी में रिपोर्ट डाल रही हूँ कि मैं एक बड़ा फैन है जी।
2: हाँ जी हाँ जी, ये तो हम तो पता है, फैन तो है
1: अच्छा एक जी राहुल गांधी उन्होंने कि
2: जी।
1: तुम्हारा जो पंजाबी फ्लेवर प्रोग्राम चल रहा था ना, ये
2: हाँ जी
1: इस शो तो हम बड़ा रोचक बनाते थे भी, जिस विच फरमाइशा भी रखते थे, कने
2: हाँ जी।
1: कोई कोई विषय रखते थे। तो कुछ दिनों ते इस है जेड़ा है ना सर, क्यों
2: बस
1: रानी जो
2: बस,
1: सुधरी
2: शांति
1: है।
2: स्वरूप जी, तो हाँ दे ना थी दड़ाई, हाँ जो थोड़ी जी शांति रखना पौनी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये थी कि आचार संहिता थी और कुछ महानिदेशा थे, निर्देश थे, तो तिना दा पालन करना पौंदा। ये बिल्कुल
1: जी।
2: इस तरह ही सुनाई देंगे तो हाँ जो दोबारा है ना
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत बड़ी खुशी होनी जी।
2: जी। और दोस्तों, पालमपुर दे क्या हाल है?
1: पालमपुर जी बिल्कुल बस ठीक ठाक है जी। देखो पता ही है भी ये पालमपुर की रौनक नहीं है, रहनी है
2: जी जी
1: कोई
2: आजकल
1: टूरिस्ट होता
2: तो
1: फिरता रहता है। हाँ जी हाँ
2: टूरिस्ट
1: जी
2: का बड़ा आना जाना होना, तो
1: बड़ा जी को खड़ा ही है जी,
2: टूरिस्ट
1: मैं कोविड
2: टूरिस्ट गल मनना दे लोकलां दी, क्योंकि हुण बरसात दा मौसम आना, ता नदी नाले जे इना किनारे नहीं जाना चाहिंदा, ता एड़े जी चेतावनी देना बड़ा जरूरी है टूरिस्ट जो।
1: हाँ जी प्रशासन करा था इसलिए काफी जगह कम
2: जी
1: कने
2: जी
1: लोग भी गलांते वैसे टूरिस्टों को गाइड करते वैसे अच्छे सब टूरिस्ट होंगे,
2: जी
1: कोई
2: जी
1: ऐसा
2: जी
1: की गल नहीं है।
2: खास कर ये सौरभ वन विहार का जो एरिया है, इस पासे काफ़ी लोग निकली आंदे खड्डा कन्ने है ना।
1: अच्छा मत ये तो सब ज्यादा मतलब टूरिस्टों का पसंद एरिया है जी।
2: जी, चलो जी, पालमपुर खेलदा बसदर है। बड़ा बड़ा धन्यवाद तुम्हें फ़ोन किया शांति स्वरूप जी।
1: धन्यवाद
2: सुनते रहे आकाशवाणी हमीरपुर।
0: जी। देखिए जब इस तरह के श्रोता हमारे साथ अपने विचार हमारे कार्यक्रमों को लेकर रखते हैं तो लगता है कि नहीं, सच में बड़ी गंभीरता से हमारे श्रोता कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं।
2: जी नेहा, और श्रोताओं को लग रहा है कि मैं कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने मेरे बारे में बताया ही नहीं, तो श्रोता सोच रहे ये व्यक्ति कहाँ से आया।
0: जी तो आप सभी को बता देते हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुज जी, और आपका फ़ोन मिला कार्यक्रम में, अब लेते हैं अगली कॉल। आपका फोन मिला कार्यक्रम में, स्वागत है आपका।
1: हाँ डॉक्टर राजन मल्होत्रा बोल रहा हूँ जी, पालमपुर से
2: डॉक्टर राजन मल्होत्रा जी, पालमपुर से।
0: जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जी।
1: हाँ जी आपके प्रोग्राम तो ठीक होते हैं लेकिन उसमें हिंदी का उच्चारण कई बार शुद्ध नहीं होता। और जो
2: अच्छा जी, और कार्यक्रम
1: अभी जो शांति स्वरूप जी ने बात की पालमपुर सौरभ बाजार के बारे में, उसके बारे में एक बात कहूं कि वहां एक टिम्बर ट्रेल चलाई जा रही है।
2: टिम्बर ट्रेन मतलब टॉय ट्रेन।
1: हाँ जी उसमें ऐसे ही गवर्नमेंट लाखों का पैसा खराब कर रही है।
2: सुनिए
1: पहले वो
2: सुनिए राजन जी, राजन जी,
1: हाँ जी हाँ
2: राजनीतिक बात मत करिए, कार्यक्रम संबंधित बात करिए कृपया। माफ करिएगा राजन जी, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी।
0: जी हमने
2: देखिए राजन जी हैं और ये राजनीतिक बातें कर रहे हैं, अपनी तुष्टि दे रहे हैं, और इस तरह के क्रिटिसिज्म, ये मंच नहीं है। हम अपने कार्यक्रम से संबंधित बात करते हैं, और ये सभी श्रोताओं के लिए कड़ा निर्देश है कि कार्यक्रम से संबंधित बात करिए, अन्यथा इस कार्यक्रम को हम स्थगित करेंगे या रद्द करेंगे, या हम चाहते हैं कि प्रबुद्ध श्रोता ही हमें कॉल करें।
0: जी, लेते हैं इस कार्यक्रम की अगली कॉल। आपका फोन मिला, मैं स्वागत है आपका।
2: जी नमस्कार, कौन बोल रहा दे?
1: नमस्ते
2: जी नमस्कार, कौन बोल रहा दे?
1: दोस्त
2: नहीं था दोस्त, था नाम ही होना कुछ। जगदीश
1: नाम जगदीश चंदे
2: जी, क्या रे जगदीश जी?
1: बढ़िया जी, बड़े दिनों बाद हो रही है आपसे बात है।
2: हाँ जी, क्या करिए, उन्हें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि तुम्हें जो पता है, तुम्हें तो जानकार आदमी है।
1: हाँ मैं कभी आ गया कि दल मसालों थी ना मेरी सूई कहीं, मैं किस प्रोग्राम सुने था, मैं सोचते हुए रहता है मुझे तो आपका फोन मिला फिर
2: कुती थी
1: बस
2: सुई
1: सोचा।
2: धर्मशाला, धर्मशाला नहीं सिलने थी, हमीरपुर पास से रखा
1: दल
2: तू सुई।
1: मसाला थी ना मेरी सूई कहीं, मैं सोचते हुए तो यह जोड़ा था प्रोग्राम, फिर मैं टेलीविजन लगाई था फिर भी सोचा वो तो दिखो वाला सूई जा दल मसाला
2: हाँ
1: थी
2: देखे किए जुड़ी सुई ने, धागा जुड़ी के है ना, वधिया सिलाई होनी एकदम।
1: सोचा। फिर लोहाई बना दे ज्यादा मीर पूरा आखिर तीता, मैं सोचा बच्चे आया बस
2: ये
1: प्रोग्राम
2: दसा सुना दे अजकल कार्यक्रम की नहीं?

0: दे ऊपर भी है बड़े कार्यक्रम कीते पिछले
1: वो हाँ
0: मैं
1: जी
0: दो
1: हाँ
0: तीन सप्ताह थे।
1: जी हाँ जी चलो लगातार चले यहाँ कर दे योग से यहाँ चलो टाइम मिल गया चलो वहाँ लाज मिलते हैं 2 घंटा
0: बिल्कुल
1: ठीक
0: बिल्कुल विनोद जी, बड़ा वधिया लगे तुमने गलबात करने और तुम्हारे मैं पॉइंट नोट कर लिया, ये तकनीकी प्रमुख तक पहुँचाई देंगे है ना। बड़ा बड़ा धन्यवाद तुम्हें फोन किया, सुन दे रहा आकाशवाणी हमीरपुर।
2: जी। देखिए जब श्रोता बात करते हैं कि हम कोई जानकारी सुनना चाहते हैं, इंटरेस्ट बढ़ता है हमारा और तभी वो चीज़ रुक जाती है तो बुरा भी लगता है। अगर हम अपनी ही बात करें तो
0: हाँ
2: हमें भी लगता है कि अधूरा ज्ञान किस काम का।
0: जी, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है
2: जी अनुज जी तो वक्त हो गया है छोटे से अंतराल का।
0: जी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
7: HIV AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
8: हिमाचल प्रदेश राज्य AIDS नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
9: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना।
10: इतनी भी क्या जल्दी थी?
9: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
10: और ये
11: मेरी गुड़िया के नाम।
12: पर दादी, आपके नाम?
13: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं, तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
9: शुभ शुभ बोलो। क्या?
13: RBI कहता है।
14: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
15: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं का लाइव फोन इन आपका फोन मिला कार्यक्रम में। आपका फोन मिला में स्वागत है आपका।
16: नमस्कार मैडम जी।
15: नमस्कार जी, कौन श्रोता बात कर रहे हैं?
16: अनु सर को भी नमस्कार।
17: जी नमस्कार जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
16: जी सर
17: जी, कौन
16: बोल रही हूँ? रंगत से।
17: अनीता जी रंगत से, क्या हाल है अनीता जी आपके?
16: बहुत बढ़िया है सर, तुम सुना? सारे
17: बस बढ़िया जी है, ठीक है जी। सारे सुना दे आजकल आदि कार्यक्रम?
16: हाँ सर सुन दी जी, ज्यादा टाइम लगता है, बिजी रहती ज्यादा ना, पर संध्या 6 बजे के बाद सुनते रहते, बड़ा अच्छा किसान वाणी हेल्थ के बारे में।
17: हाँ जी हाँ जी, महिला कार्यक्रम भी सुनते नहीं कि नहीं? कोई महिला उद्यमी है एक?
16: नहीं सर सुनते, पर दिना जी लगता 12 बजे उन्हें सुनी होता ना।
17: अच्छा अच्छा, दिन नहीं तो लगता, शामी नहीं आंदा कोई भी महिला?
16: हां जी हां जी, दिन जो 12 बजे लगदा ना।
17: एड़ा करा करे ना, कोई बंदा रखना ना उठते से बोलना, रिकॉर्ड कर लिया करा और बस सुनी लेना फिर आई ने।
16: हां जी नहीं सर, कल कल तो सुनी लंदे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुंदा मेला दे ते और भी सारा।
17: अच्छा जी,
16: पर लोगा जो बड़े अमीर प्रवासी है और हिमाचल दे के अमीर पर आंदे हैं, आकाशवाणी होई है, कभी सोचे नहीं हवे इत्थे भी आए गल करगे कभी रेडियो जी?
17: नहीं नहीं देखा जी, तुम्हें श्रोतिया करने आकाशवाणी है, क्योंकि श्रोते नहीं होंगे तो हाँ जो कौन सुनूंगा और क्या अपनी प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि अहे भी श्रोतिया करने जुड़ते रहेंगे और तिना के विचार जानी ने अगे तो अगे परस्पर ये सोचते कि जेडे जे कार्यक्रम ले आईए जिन्हें जे सुनी ने फायदा हो श्रोतिया है ना।
16: सर सुबह उठी ने तो मैं हाथ मुंह धोने के उसके बाद स्विच ऑन करिए ना, भजन कीर्तन सुनने बड़े बढ़िया लगते।
17: अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो सोचे गीजर दा स्विच ऑन कर देंगे नहाने
16: वास्ते। नहीं सर गीजर जा का जो करना है
17: सवेरे उठी ने अक्सर बंदा यही करता ना,
16: पहाड़ी बंदे दा पहाड़ी चूल्हा
17: चूल्हा चूल्हा, बिल्कुल ठीक है जी, ये भी ठीक है।
16: नहीं मिल रहा दे के ना दुई गाल एक दिन में कितने रेडियो ची गाल गेती था, कोई बंदा गलोड़ी ते टोल दा या हम इनसे बोले मैं ट्रेन गलैंड क्या क्या बनाम दे मैडम।
17: अच्छा
16: ताते बड़ी मिल ले नहीं मतलब, चलो रेडियो ते
17: हाँ तो मैं बोली था और जरूर गुमशुदा की तलाश हो जानी
16: है। नहीं मिल रहा ना टोले पर।
17: अच्छा मिली आना, कोई गल नहीं, उन सुना दे उन्हें से कार्यक्रम ना।
16: नहीं मिल ना दी ना, मैं कल गुआची आन दी ना फेरी।
17: अच्छा तू है नहीं मिल ना दी ना जो
16: सर तो चली आन दी दिहाड़ी लगाने भी चली
17: आन दी। नहीं नहीं ये तो गलत कर रही है, नहीं तो एक दिन तो मिलना चाहिए था जी बंदे इतनी दूर।
16: मिली आना टोला तो बंदा तो मिली आना भगवान का घर, मैं तो इंसान है।
17: बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो ठीक बोले और मिलना चाहिए था, देखा कोई हाँ जो जे टोला था तो दिसदी भी कुछ आस होनी है ना।
16: नहीं नहीं सर बोलने क्या, कुछ लोगों जो जागरूक और अच्छी चीजा लग गई है ताई लोग फोन करा दे।
17: बिल्कुल बढ़िया गली और अनीता जी, इयां ही तुहे महिला प्रोत्साहन वास्ते महिलाओं जो आगे बढ़ाने वास्ते काम करदे रहा और आकाशवाणी दे कार्यक्रम सुनदे रहा, तुहे आज जो कॉल किया बड़ा बड़ा धन्यवाद अनीता जी।
16: चलो सर, बड़ा बड़ा धन्यवाद तुम्हारा भी मते दिन कॉल लगाई।
17: जी जी हुण कोई नहीं, अगले आखिरी शुक्रवार जे आंगा श्रोता है ये भी, और श्रोता काफी खुश हो रहे हैं क्योंकि एक लगभग 1.5-2 महीने का अंतराल था और वो जो हमारे ऊपर दिशा निर्देश लागू होते हैं उन कारणों से था।
4: जी
17: देखिए, अच्छा लगता है हमें भी अपने श्रोताओं से बातचीत करना, किसको अच्छा नहीं लगता।
4: जी चलिए अगले श्रोता।
18: हेलो
17: जी, नमस्कार।
18: नमस्कार सर जी।
17: जी नमस्कार जी, कौन बोला
18: दे? नमस्कार मैडम जी, मैं बॉबी बोला जी अरले।
17: बॉबी जी, वाह वाह वाह, बॉबी जी अरले ते क्या हाल है बॉबी जी तुहंदे?
18: बड़े वधिया जी, हां तुहंदे प्रोग्राम सुने बड़े अच्छे लगे जी। संजय सर जी ने हुंदे 1 अप्रैल मनाया, बड़ा शैल लगे हां जी।
17: अच्छा 1 अप्रैल बड़ा मांगा लगे हां।
18: ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਾਕੇ ਚ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੀਤ ਸੁਣਾਣੇ ਬੋਲਿਆ।
17: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ?
18: ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਸ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਥਾ।
17: ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ।
18: ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੋ ਬਨੀਤਾ ਮੰਡਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ,
17: ਹਾਂਜੀ
18: ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਹਾਂ ਰਸੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ।
17: ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭੁੱਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਬਰ ਸੁੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਦਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਦੇ।
18: ਹਾਂਜੀ ਕਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਜੀ।
17: ਜੀ
18: ਬੋਲੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮੇ ਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਸਾਫ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਿਆ।
17: ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਇਤਨੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸਰ ਨੇ ਕਦੀ।
18: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੋ ਸੰਜੇ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ,
17: ਹਾਂਜੀ
18: ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਿਆ।
17: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
18: ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ।
17: ਬੋਬੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਿਦ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਨਗੀ ਆਏਗੀ ਆਹ ਜੋ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ।
18: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਲਿਖੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ।
17: ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਤਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਬੜ चर्चा करते हैं विद डेट वाइज, और ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि इतने ध्यानपूर्वक कोई कार्यक्रम सुनता है। और इन्होंने जैसे बताया कि मैं सिर्फ सुनता ही नहीं, मैं नोट करता हूँ ताकि उसको अमल कर सकूँ अपनी ज़िंदगी में।
15: जी, और जिस तरह से इन्होंने तारीखें बताई और अनाउंसर्स के नेम बताए, तो हमारे लिए भी ये एक तरह से प्रेरणा की बात है कि चलिए हमारे श्रोता हमें इतने ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हम उनके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आएँ। एक और श्रोता है, इनसे बात करते हैं। आपका फ़ोन मिला, मैं स्वागत है आपका।
19: हेलो
17: जी, नमस्कार, कौन बोल रहा दे?
19: राम राम जी।
17: राम राम जी, कौन बोल रहा दे?
19: विधि
17: चंद जी। विधि चंद है तुम्हारा नाम?
19: हाँ जी।
17: विधि चंद की क्या नाम बोले अपना तुहे?

संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
7: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
3: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
8: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं। एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-29, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. More from our correspondent.
11: The Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. The government has also decided to reduce the diversion of C3-C4 streams to LPG pool. During the West Asia crisis, the government had issued orders under the Essential Commodities Act requiring C3-C4 streams to be utilized exclusively for LPG production, diverting them from petrochemical and other downstream uses to augment domestic LPG production. The enhanced allocation of C3-C4 streams for non-LPG uses will be implemented while ensuring that the domestic LPG availability remains unaffected and aggregate indigenous LPG production is maintained at not less than 40 TMT per day. The government has directed oil marketing companies to continue maintaining comprehensive data on commercial and industrial LPG consumers to facilitate efficient planning and supply management. It has reiterated its commitment to expanding PNG connectivity. With Suparna, Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
10: The government has hiked the fees for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of July. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. In case of an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages, a sum of 5,000 rupees will be charged. For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages, the cost will be 6,000 rupees. The National Testing Agency, or NTA, has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. The NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Further, the NTA has opened a portal for candidates who appeared for the re-exam to confirm and update their bank account details for fee refunds. The deadline to update the bank details is the 30th of this month. The Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in different parts of the country today. The day marks the martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Hazrat Imam Hussein, and his companions who laid down their lives for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Tazia processions will be taken out on the occasion. The majlis or religious meetings highlighting the supreme sacrifice of Karbala martyrs are also being organized. Elaborate security arrangements have been made on the occasion. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. Uttar Pradesh government has taken strict action in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case, with the first FIR registered against 8 named accused and other unidentified persons. The FIR was filed following recommendations by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of the Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station based on the written complaint of trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ram Shankar Mishra, Subhash Srivastav and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinu, along with other unidentified accused. Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat participated in New Delhi in the closing ceremony of year-long programs commemorating 50 years of the emergency yesterday. The event marked the culmination of a series of activities organized to remember the period and reaffirm democratic values. On the occasion, the Union Minister visited the long-lived democracy and digital district repository exhibitions. Addressing the gathering, Mr. Shekhawat stated that the program was dedicated to honoring the unsung heroes of the freedom struggle, strengthening constitutional democracy and celebrating India's cultural legacy.
12: 51 वर्ष पूर्व 55 years ago, on 25th June 1975, India witnessed one of the darkest nights in the history of its democracy. It was night when an attempt was made to suppress the spirit of the Constitution and undermine its values. The freedom guaranteed by the Constitution, including citizens' liberty, freedom of expression, and fundamental rights, were curtailed under the rule of an overly ambitious government.
10: The International Monetary Fund, IMF, has said that India continues to be a major driver of global economic growth despite the economic impact of the Iran conflict and higher energy prices. Addressing a regular IMF press briefing, Julie Kozak, director of IMF's communications department, said India's economy has remained resilient despite external headwinds supported by robust domestic demand. We have a report.
13: The International Monetary Fund said it continues to project India's economy to grow by 6.5% in fiscal year 2026-27, maintaining the upward revision made in April. Julie Kozak said the forecast reflected strong momentum carried over from last year and the reduction in US tariff rates, which helped cushion the impact of the global energy shock. Ms. Kozak also said India's economy had continued to outperform expectations during the first quarter of the calendar year.
14: India's economy has been growing robustly. And it has been supported particularly by very strong domestic demand within India. We had projected growth at 6.5% in fiscal year 26-27, and that was a slight upgrade. That was in April, and that was a slight upgrade compared to what we had had in January. So 6.5% is still quite strong growth. We see that there's strong momentum that has continued in the first quarter of this calendar year.
13: She further said the IMF viewed the recent ceasefire in the West Asia and progress towards reopening the Strait of Hormuz as positive developments for the global economy. She noted that oil prices have retreated from their peak but remained around 10% above pre-war levels, while some other commodity prices have also begun to ease. The IMF is expected to provide updated global economic projections on 8th of July. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
10: In Venezuela, death toll after two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday in Caracas and the nearby coastal city of La Guaira. People could be heard calling for help from under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger shock of 7.5 magnitude, both occurring close to the surface, making destruction more severe. The country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. On to sports now. In the FIFA World Cup, Ecuador advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. Gonzalo Plata turned savior as the resilient Ecuador pulled off a stunning 2-1 come-from-behind victory against Germany. Earlier, Ivory Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory over

हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस अंक में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी को नियुक्ति के बाद 4 साल तक पदोन्नति नहीं मिलती है तो वो नई एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत अगले ग्रेड पे का लाभ पाने का हकदार हैं। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू अध्ययन केंद्र 1104 में जुलाई 2026 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में 15 जुलाई तक ऑनलाइन प्रवेश आवेदन जमा करवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने अपने अध्यक्ष से लेकर प्रमुख अभियंता तक की वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। जी हां, बोर्ड के निदेशक मंडल ने वीरवार को हुई बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी है। इसके साथ ही गिरी पावर हाउस के आधुनिकीकरण और बद्दी में 2 बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम लगाने को भी हरी झंडी मिली है। वित्तीय शक्तियों को नए सिरे से तय किया जाएगा। बैठक में गिरी पावर हाउस के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के CBSE स्कूलों में जुलाई में और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 30 जून से पहले योग और म्यूजिक शिक्षकों को भी नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं। आधार प्रमाणीकरण सर्वर में आई तकनीकी खराबी के चलते प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से उपभोक्ताओं को डीपुओं से

राशन नहीं मिल पा रहा है। माह के अंतिम सप्ताह में सर्वर डाउन होने से राशन लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग निदेशालय ने अब डिपो धारकों को QR कोड के माध्यम से राशन वितरण करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के बाद अब डिपो धारक राशन कार्ड पर लगे QR कोड से राशन वितरण करेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आधार सर्वर न होने के कारण डिपुओं में राशन वितरण व्यवस्था बाधित हो गई है। सोलहवें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायतों को जुलाई में 481 करोड़ रुपए की पहली किस्त मिलने की संभावना है। इसे लेकर 3 जुलाई को नई दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8:35 होने को हैं। अब से लेकर सुबह के 9:20 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: वो रोमियो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गुलजार की रचना थी, विशाल भारद्वाज का संगीत था।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम चित्रलोक। हाईवे फिल्म का गाना है ज्योति नूरा और साथियों की आवाजें।

हाईवे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, ज्योति नूरा और साथियों की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

0: रिवॉल्वर रानी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज में। पुनीत शर्मा के बोल थे, संजीव श्रीवास्तव का संगीत था। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर। दोस्तों विविद भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज 26 जून है दोस्तों, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत को हर हाल में जिंदा रखना है। आज पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर यानी यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत इसलिए की थी ताकि दुनिया भर में उन लोगों की आवाज़ सुनी जा सके जिन्होंने किसी न किसी रूप में मानसिक या शारीरिक यातनाएं झेली हैं। ये दिन सिर्फ दर्द को याद करने का दिन नहीं बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके घावों को भरने का संकल्प लेने का दिन भी है। दोस्तों एक सभ्य समाज में किसी भी इंसान को प्रताड़ित करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कानून और इंसानियत दोनों यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है। अगर हमारे आसपास किसी के साथ भी गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए बल्कि उनकी ताकत बनना चाहिए। तो आइए विविध भारती की ओर से हम आपसे ये आह्वान कर रहे हैं कि हम सब अपने से वादा करें, खुद से वादा करें कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां नफरत की जगह केवल हमदर्दी हो, सम्मान हो और हो प्यार, और अपना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे। सुनिए ये गाना, कहीं ये साथ की बात तो नहीं कर रहा है। फिल्म है तमाशा, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत है।

तमाशा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

0: सिंघम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अकेली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गुरुशब्द सिंह और चयनिका गर्ग की आवाजों में। बोल गुरुशब्द सिंह के थे, संगीत भी इन्हीं का था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: थप्पड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राघव चैतन्य की आवाज में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है। लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचानें, अपने सपनों को जिएं और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था। आज के दिन नशा मुक्ति के लिए और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल है, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय माँ शूलिनी मेला आज से होगा शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे विधिवत शुभारंभ। चंबा जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए 551 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत करेगा और आज देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा आशुरा ए मुहर्रम। अब समाचार विस्तार से। सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय माँ शूलिनी मेला आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस मेले का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे कचहरी चौक पर माता की डोली का स्वागत करेंगे तथा शोभा यात्रा में भाग लेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: शूलिनी मेले की सबसे आकर्षक परंपरा माता शूलिनी की भव्य शोभा यात्रा है। इस दौरान माता की पालकी को विशेष रूप से सजाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। हजारों श्रद्धालु स्थानीय देवता वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और पारंपरिक नृत्य इस शोभा यात्रा को अद्भुत व दिव्य स्वरूप प्रदान करते हैं। पूरा सोलन नगर भक्तिमय वातावरण में रंग जाता है। मेले के पहले दिन माता शूलिनी की डोली पूरे सोलन शहर परिक्रमा करती है। इसके बाद डोली गंज बाजार स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचती है, जहां उनकी बहन विराजती है। माता शूलिनी पूरे 2 दिनों तक अपनी बहन के मंदिर में रुकती हैं। 3रे दिन की शाम को दोनों बहनों की विदाई प्रसंग होता है और माता शूलिनी वापस अपने मंदिर लौट जाती है। ये मेला 2 बहनों के प्यार और मिलन का प्रतीक है, जिसे पूरा सोलन शहर बड़े उल्लास के साथ मनाता है। पुराने समय में माँ शूलिनी मेला केवल 1 दिन के लिए अषाढ़ मास के 2रे रविवार को माता शूलिनी के मंदिर के समीप स्थित खेतों में आयोजित किया जाता था। समय के साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ी और सोलन जिले के गठन के बाद इसे पर्यटन व सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए राष्ट्र स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। माता शूलिनी देवी को सोलन नगर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मान्यता है कि माता शूलिनी देवी के नाम पर ही इस नगर का नाम सोलन पड़ा। धार्मिक आयोजनों के साथ साथ मेले में सांस्कृतिक संध्याएं, लोक नृत्य, लोक संगीत, खेल प्रतियोगिताएं, कुश्ती, दंगल, हस्तशिल्प प्रदर्शनियां और स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। मेले का समापन 28 जून को होगा, जिसमें राज्यपाल कविंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।
0: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इसे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। चंबा जिला में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले सड़क सुविधा से वंचित गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत जिला चंबा के लिए लगभग 551 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे सड़क निर्माण के कार्य संपन्न होंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि इन गांवों को सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
2: जिला चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत 551 करोड़ रुपए की राशि वाली स्वीकृत 65 सड़क परियोजनाओं में से 61 का कार्य शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। शेष 4 सड़कों के निर्माण को जल्द शुरू करने के लिए विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जहां लोगों का घर द्वार तक सड़क निर्माण का सपना पूरा किया है, वहीं ग्रामीण इलाकों की तस्वीर भी बदल कर रखती है। आकाशवाणी के लिए से विकास ठाकुर।
0: जिला रेडक्रॉस सोसाइटी कुल्लू द्वारा कल निर्मंड स्थित डे केयर सेंटर में दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि रेडक्रॉस बिना किसी भेदभाव के संकटग्रस्त असहाय व जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान लगभग 80 लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सड़क निर्माण कार्य के दृष्टिगत धर्मशाला शहर के कोतवाली बाजार गांधी पार्क से काला पुल होते हुए बाईपास जंक्शन तक सड़क को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर 27 जून तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि के दौरान वाहनों का संचालन खड़ा डंडा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 503, धर्मशाला बाईपास पर किया जा सकता है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और NewsOnAIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत करेगा। ये क्विज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप के अवसर पर शुरू किया जाएगा। इसे देश भर में चलाए जाने वाले विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वास्थ्य और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर आज प्रदेश में एंटी चिट्टा डे के रूप में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नशे, विशेषकर चिट्टे के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में ऊना जिले में भी नशे के विरुद्ध विशेष जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी नशे के खिलाफ शपथ लेकर समाज से चिट्टे व अन्य मादक पदार्थों के उन्मूलन का सामूहिक संकल्प लेंगे। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पौत्र हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मुहर्रम मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक शहर में नाहन में मुहर्रम पर 2 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शिरकत करते हैं। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि देर रात शहर के गुन्नू घाट में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां तैयार किए गए ताजिए के दर्शन करने पहुंचे, जहां मरसिए पढ़कर इमाम हुसैन सहित कर्बला के अन्य

0: महिलाओं को 1500-1500 रुपये देने की घोषणा। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, 2.5 साल से ज्यादा कार्यकाल वाले डीसी और एसडीएम बदले जाएंगे। हिमाचल दस्तक बकौल मुख्यमंत्री लिखता है, भाजपा के चारों सांसद दिल्ली में हिमाचल की पैरवी करने से डरते हैं। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर भर्ती से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है, युवाओं ने 1 बजे फार्म भरे, 3 बजे टेस्ट, 5 बजे चयन और रात 8 बजे प्रबंधन ने कहा जरूरत पर बुलाएंगे। मौसम पर पंजाब केसरी का कहना है, हिमाचल प्रदेश में जल्द दस्तक देगा मानसून। अमर उजाला लिखता है, शिमला में बरसे बादल, आज 7 जिलों में बारिश, अंधड़ का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय माँ शूलिनी मेला आज से होगा शुरू, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे विधिवत शुभारंभ। चंबा जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए 551 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत करेगा। और आज देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आशुराए मुहर्रम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 9:30 हुए हैं, अब से लेकर 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के

वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलनथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है।

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

इलैयाराजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे, तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया, हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

इले राजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी तीन संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलैयाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलैयाराजा का कहना है कि ये हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल नीलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल है।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
2: अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बजने को हैं, आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
4: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
5: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है लघु वार्ता।

भ्रम की गहराइयों में जो जिंदगी को ढूंढते हैं वो असल में खुद अपनी बर्बादी को ढूंढते हैं। रोक लो इन कदमों को वक्त रहते ऐ दोस्त। धुएं के बादलों में लोग अक्सर रोशनी ढूंढते हैं। श्रोताओं, आपका स्वागत है आज की इस लघु वार्ता में। आज 26 जून है। पूरे विश्व में आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसी विषय पे आज आधारित है आज की ये लघु वार्ता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1987 में इस दिन की शुरुआत की थी ताकि दुनिया को नशे की इस भयानक लत और इसके पीछे चलने वाले अवैध काले कारोबार के खिलाफ जागरूक किया जा सके। आज का ये दिन कोई उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन है आत्ममंथन करने का। ये दिन है समाज की एक ऐसी कड़वी हकीकत से रूबरू होने का जो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे हंसते खेलते परिवारों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। श्रोताओं, अक्सर जब हम ड्रग्स या नशा ये शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी और के घर की कहानी है, ये फिल्मों का कोई दृश्य है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आज नशा हमारे पड़ोस तक, हमारी गलियों तक और बदकिस्मती से हमारे स्कूलों और कॉलेजों के दरवाजों तक भी पहुंच चुका है। आखिर क्यों कोई युवा नशे के इस दलदल में कदम रखता है? शुरुआत होती है तो सिर्फ एक बार आजमाने से, जस्ट फॉर वंस, दोस्तों के दबाव में या फिर आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अकेलेपन और डिप्रेशन से भागने के लिए। लेकिन जिसे वो शुरुआत में एक सुकून का रास्ता समझते हैं, वो असल में एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें प्रवेश करना तो आसान है मगर बाहर निकलने का रास्ता किसी को नहीं मिलता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग ड्रग्स की गिरफ्त में हैं और हर साल लाखों लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों वो परिवार हैं जो जीते जी हर रोज मरते हैं। श्रोताओं, इस पूरी त्रासदी का एक और सबसे स्याह पहलू है, सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं है ये, बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। सीमाओं के पार से होने वाली ये तस्करी सीधे तौर पर आतंकवाद, हथियारों की अवैध खरीद और काले धन को बढ़ावा देती है। ड्रग तस्करों को ये जाल इतना शातिर है, इनका ये जाल इतना तेजी से बढ़ता है कि इनका सीधा निशाना हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, हमारी युवा पीढ़ी होती है। वो जानते हैं कि अगर किसी देश के युवाओं को दिमागी और शारीरिक रूप से अपंग बनाना है तो उन तक नशे की सप्लाई आसान कर दो। आज की इस लघु वार्ता से हमें समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति नशा खरीदता है तो वो सिर्फ अपने लिए मौत नहीं खरीद रहा, बल्कि वो अनजाने में उस पूरे आपराधिक साम्राज्य को फंडिंग कर रहा होता है जो समाज को तबाह करने पर तुला है। इसलिए कानून के साथ साथ समाज की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इस जंग को जीता कैसे जाए? क्या सिर्फ सरकारें या पुलिस इस पर लगाम लगा सकती है? तो सीधा सा जवाब है कि नहीं। जब तक समाज का हर नागरिक इस लड़ाई में सैनिक नहीं बनेगा, तब तक बदलाव नामुमकिन है। सबसे पहली और सबसे बड़ी भूमिका है परिवार की। आज की व्यस्त जीवन शैली में कहीं ना कहीं संवाद की कमी हो गई है। माता पिता को अपने बच्चों का दोस्त बनना ही होगा। अगर आपके बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव आ रहा है, जैसे उसका चिड़चिड़ा होना, अचानक से पढ़ाई से मन उठना, कमरे में खुद को बंद रखना या दोस्तों का सर्कल बदलना,
तो उस पर चिल्लाने की बजाय उससे प्यार से बात कीजिए, उसे डांट के नहीं, आपके साथ की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी हमारे शिक्षण संस्थानों की है। स्कूलों और कॉलेजों में केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी ज़रूरी है। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि पीयर प्रेशर यानी दोस्तों के दबाव में आकर गलत काम को हाँ कहने की बजाय हिम्मत से नो कहना ज़रूरी है। से नो टू ड्रग्स सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। श्रोताओं, इस चर्चा के बीच एक और बहुत ज़रूरी बात हम कहना चाहेंगे। जो लोग नशे के दलदल में फंस चुके हैं, समाज उन्हें गुनहगार की नज़र से देखना बंद करे। वे अपराधी नहीं हैं, वे बीमार हैं, वे पीड़ित हैं। उन्हें हमारी नफ़रत की नहीं, हमारे इलाज और सहानुभूति की ज़रूरत है। आज चिकित्सा विज्ञान और काउंसलिंग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सही समय पर इलाज मिलने से कोई भी व्यक्ति इस लत से पूरी तरह बाहर आ सकता है। पुनर्वास केंद्रों की मदद लेने में कोई हिचक या शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस रास्ते से लौटकर वापस मुख्य धारा में आना चाहता है तो समाज के तौर पर हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम उसे गले लगाएं, उसे रोज़गार के, शिक्षा के नए मौके दें ताकि वो एक बार फिर सम्मान से सिर उठाकर जी सके। चलते चलते आइए आज 26 जून के इस ऐतिहासिक दिन पर हम सब मिलकर एक मजबूत संकल्प लें। संकल्प अपने घर को, अपने समाज को और अपने देश को नशा मुक्त बनाने का। ज्ञान की उस ज्योति को जलाएं जिसके आगे अज्ञानता और नशे का ये अंधेरा टिक ना सके। अपने आसपास नज़र रखें, युवाओं को खेलों, कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों से जोड़ें, क्योंकि एक व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण दिमाग कभी नशे की तरफ नहीं भटकता। चलो आज एक नया सवेरा लाते हैं, भटके हुए कदमों को सही राह दिखाते हैं। नशे की इस अंधेरी दुनिया को मिटाकर, आओ मिलकर जिंदगी का जश्न मनाते हैं। नशे को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें। इसी संदेश के साथ आज की ये लघु वार्ता यहीं पर संपन्न होती है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 10:15 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल कवाली।

महफिले कव्वाली कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जी हाँ, कव्वालियों की महफिल सजने जा रही है और ऐसी मुकद्दर फैम महफिल तब तक अधूरी है जब तक सामने बैठे कदरदानों का साथ ना मिले। आज की इस महफिल की सबसे बड़ी खासियत आप सभी हैं, लेकिन याद रहे कव्वाली की महफिल का एक दस्तूर होता है। यहाँ खामोश बैठकर सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि खुलकर दाद दी जाती है। तो ये रही आज के इस कार्यक्रम की ये पहली कव्वाली।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महफिले कवाली। तेरी महफिल में बैठे हैं तो अंदाज बदल गए, तेरे सुरों की कशिश से मेरे अल्फाज बदल गए। कवाली कोई गाना नहीं है जिसे सिर्फ कानों से सुना जाए, मैं श्रोता हूँ, ये तो इबादत है जिसे रूह से महसूस किया जाता है। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये कवाली।
1: दिल से दिल वालों के लिए गाना, दिल जलों का ख्याल हम रखेंगे।

श्रोताओं, आज की ये महफिल और सुरों का ये सैलाब हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में दर्ज हो गया है। वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। कवाली का ये जादू ही ऐसा है, घड़ियाँ छोटी पड़ जाती हैं, महफिल तो ख़त्म होती है मगर रंग रह जाता है। सुर भले ही थम जाए पर तरंग रह जाता है। बिछड़ जाते हैं महफिल से सब अपने अपने घर के लिए, मगर दिलों में सूफियाना एक उमंग रह जाता है। श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम महफिले कवाली यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त नेहा को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले कव्वाली। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:45 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए पहाड़ी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग।

0: जी श्रोतियो, मिठे मिठे लोक गीतां दा कार्यक्रम लोक रंग लेक ने हाजिरी। मैं तुहांदी दोस्त पूजा शर्मा तकरा स्वीकार अहां दा प्यार भरिया नमस्कार। दिखा भई जित्थू भी चली जांद, कुते भी जितने भी दिन तुहां रही कने घूमी कने आई आंद, पर जो मजा जो खुशबू इत्थां दी माटी अची से कुती भी नहीं मिलनी। जो मिठास इत्थां दे लोक गीतां च कने इत्थी दी बोली अची ना, से भी कुती नहीं मिलनी। तो आओ भई इन्हां मिठी मिठी गल्लां बातां सौगी कने मिठे मिठे लोक गीतां दा कार्यक्रम करिए शुरू लोक रंग इस प्यारे जे लोक गीता सौगी।
1: दूर परदेश से आई एक नवयुवती जब पहली बार हिमाचल की सुंदर और ठंडी वादियों में पहुंचती है तो उसकी मुलाकात एक छबीले नौजवान से होती है।

0: जी बिल्कुल श्रोते हो भई पाड़न दा बसना तो नंद लाए दिंदा, बड़ा ही मौजा लगाए दिंदा, है ना। और ए गीत तुहां सुनिया, मिठा जिहा भाव इस गीत च था, कने स्वर तुहां सुना दे थे आहां दे लोक गायक आहां दे करनैल सिंह राणा होरां। हुण कार्यक्रम च आहां लैणा एक छोटा जिहा अंतराल, अगला लोक गीत इस अंतराला ते बाद।
1: कश्मीरी सन ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार, हमीरपुर। 145 सालों से कश्मीरी सन ज्वेलर्स के गहने आपकी खुशियों और हर खास मौके की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर अवसर के लिए कुछ खास है। गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन ज्वेलर्स। संपर्क करें 9418000363। कश्मीरी सन ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार, हमीरपुर। 145 सालों से कश्मीरी सन ज्वेलर्स के गहने आपकी खुशियों और हर खास मौके की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर अवसर के लिए कुछ खास है। गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन ज्वेलर्स। संपर्क करें 9418000363। कश्मीरी सन ज्वेलर्स।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना।
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना।
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: जी श्रोतियो, अंतरालत बाद तुहां जो उन आहां सैर करानी प्यारे जे चंबे दी, प्यारी जे वादियां दी।

जी दोस्तों, अहाँ तो हाँ बड़े भाग्यशाली ये कि अहाँ जो ए हिमाचल प्यारा जिया हिमाचल अच्छे जन्म मिलिया, ए अहाँ जो प्यारी जे मीठी जे इथा दी माटी मिली मिट्टी मिली, तहाँ इस हिमाचल जो कर दे प्रणाम कर दे, और अहाँ यही प्रार्थना हर वक्त कर दे कि अहाँ दा हिमाचल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हमेशा ही करता रहे। इन्हें शब्दों सौगी दिया पूजा शर्मा जो कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। राम राम। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लोक रंग कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सोलन जिला का राष्ट्र स्तरीय माशूलिनी मेला आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस मेले का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे कचहरी चौक पर माता की डोली का स्वागत करेंगे तथा शोभा यात्रा में भाग लेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: शूलिनी मेले की सबसे आकर्षक परंपरा माता शूलिनी की भव्य शोभा यात्रा है। इस दौरान माता की पालकी को विशेष रूप से सजाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। हजारों श्रद्धालु स्थानीय देवता, वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और पारंपरिक नृत्य इस शोभा यात्रा को अद्भुत व दिव्य स्वरूप प्रदान करते हैं। पूरा सोलन नगर भक्तिमय वातावरण में रंग जाता है। मेले के पहले दिन माता शूलिनी की डोली पूरे सोलन शहर परिक्रमा करती है। इसके बाद डोली गंज बाजार स्थित दुर्गा मंदिर पहुंचती है, जहां उनकी बहन विराजती है। माता शूलिनी पूरे 2 दिनों तक अपनी बहन के मंदिर में रुकती हैं। 3रे दिन की शाम को दोनों बहनों की विदाई प्रसंग होता है और माता शूलिनी वापस अपने मंदिर लौट जाती है। माता शूलिनी देवी को सोलन नगर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मान्यता है कि माता शूलिनी देवी के नाम पर ही इस नगर का नाम सोलन पड़ा। मेले का समापन 28 जून को होगा, जिसमें राज्यपाल कविंद्र गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।
0: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। चंबा जिला में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले सड़क सुविधा से वंचित गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण के तहत जिला चंबा के लिए लगभग 551 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे सड़क निर्माण के कार्य संपन्न होंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि इन गांवों को सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। अधिक ब्यौरा हमारे चंबा जिला संवाददाता से।
2: जिला चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत 551 करोड़ रुपए की राशि वाली स्वीकृत 65 सड़क परियोजनाओं में से 61 का कार्य शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया गया है। शेष 4 सड़कों के निर्माण को जल्द शुरू करने के लिए विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जहां लोगों का घर द्वार तक सड़क निर्माण का सपना पूरा किया है, वहीं ग्रामीण इलाकों की तस्वीर भी बदल कर रखती है। आकाशवाणी के लिए से विकास ठाकुर।
0: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। ये बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में बहाली हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा मुहर्रम मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक शहर नाहन में मुहर्रम पर 2 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शिरकत करते हैं। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि देर रात शहर के गुन्नू घाट में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ तैयार किए गए ताजिए के दर्शन करने पहुंचे, जहाँ मरसिए पढ़कर इमाम हुसैन सहित कर्बला के अन्य शहीदों को याद किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर आज प्रदेश में एंटी चिट्टा डे के रूप में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नशे विशेषकर चिट्टे के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में ऊना जिले में भी नशे के विरुद्ध विशेष जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी नशे के खिलाफ शपथ लेकर समाज से चिट्टे व अन्य मादक पदार्थों के उन्मूलन का सामूहिक संकल्प लेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दिन के 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में यह गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थीं, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे। बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

0: चंद्रदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

0: रंग तरंग अब सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम वनिता मंडल।

0: जी आज है दिन शुक्रवार, तो करते हैं अपनी सखियों का खत्म इंतजार। और हम भी बैठे हैं तैयार करने अपनी सहेलियों से बातें हजार। आज मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ
1: नेहा मिश्रा।
0: तो करिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: देखिए ना, हौसलों के पंख लगाकर जो उड़ान भरती हैं वो कोई और नहीं, इस समाज की देवियां होती हैं। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं खुशहाली का वास होता है।
0: जी बिल्कुल नेहा। और देखिए ना, घर की रौनक की बात करें तो भाई घर की रौनक दुगनी हो जाती है किससे?
1: जी हाँ,
0: बताएंगे आप किससे?
1: हमारी सखियों से और बच्चों से।
0: बच्चों से। और देखिए, अगर पायल की छन छन की आवाज, चूड़ियों की खन खन की आवाज आती रहती है तो यूं लगता है कि घर जो है वो खिलखिला रहा है, आंगन महक उठा है, खिलखिला रहा है। और इसमें और भी चार चांद लगाती हैं हमारी प्यारी प्यारी बेटियां।
1: जी हाँ, खिलती हुई कलियां हैं ये बेटियां। माँ बाप का मान और अभिमान है ये बेटियां। इन्हें कमजोर समझ की भूल ना करना।
0: बिल्कुल
1: भाई जरा गौर कीजिए, इन्हें कमजोर समझने की भूल ना करना। आज के दौर में हर मुकाम को छू रही हैं बेटियां।
0: जी बिल्कुल नेहा, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी बेटियां जो है वो कहीं पीछे है, है ना। आप खेल के मैदान से ऊपर आसमान की उड़ान की बात कर लीजिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई भी ऐसा कोना नहीं जहाँ पर हमारी बेटियों ने परचम ना लहराया हो।
1: जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप बात कर रही हैं, ये संकेत मिल रहा है हमें और हमारी सखियों को कि आप कोई ना कोई योजना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हैं।
0: जी नेहा, देखिए बताने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हमारी सभी बहनें, सभी सखियां बहुत ही जागरूक हैं। पर फिर भी कोई ऐसी सखी जो हमारा कार्यक्रम सुन रही है और उसे मतलब इस चीज़ का थोड़ा कम पता है, तो भाई हम उनको पूरी जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। जी हाँ, SSY, इसके बारे में हम बात करेंगे।
1: जी बिल्कुल पूजा। और ये सिर्फ एक बचत योजना नहीं है, बल्कि हमारी बेटियों के पंखों को उड़ान देने का एक जरिया है। जब हमारी बेटी बड़ी होगी, उसे उच्च शिक्षा की ज़रूरत होगी या उसकी शादी का वक्त आएगा, तब ये योजना एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी होगी।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना, हुनर तो सभी में है, कला तो सभी में है, लेकिन अगर आपके पास उस कला को निखारने का, उस हुनर को निखारने का कोई माध्यम नहीं है तो कहीं ना कहीं वो हुनर फिर छुपके रह जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हमारी सरकार ने समय समय पर ऐसी कई योजनाओं का आगाज़ किया है जिससे हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, और सुकन्या समृद्धि योजना इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है। देखिए सखियों के बताएं आपको, भारत में बालिकाओं के ये सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था। यह माता पिता और तथा कानूनी अभिभावकों को बालिका की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए एक सुरक्षित निधि बनाने का साधन प्रदान करती है। साथ ही प्रति वर्ष 8.2% की आकर्षक ब्याज दर भी प्रदान करती है।
1: जी, और इस पर अर्जित ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त है। वहीं अंतिम परिवक्ता राशि जो है वो आयकर से भी मुक्त है। और समय से पहले अगर निकासी की बात करें तो खाता धारक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा व्यय के लिए खाते की शेष राशि का 50% तक जो है वो निकाला जा सकता है।
0: बहुत अच्छी बात आपने साझा की। और साथ ही में बताएं कि 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के लिए खाता खोला जा सकता है। प्रति परिवार अधिकतम 2 खाते, यानी कि प्रत्येक बालिका के लिए एक एक। अगर आपके पास 2 बच्चियां हैं तो दोनों के लिए ये खाते खोले जा सकते हैं।
1: जी, और देखिए ना, इस तरह की योजनाएं जब हम अपनी सखियों के साथ साझा करते हैं या ये सरकार जो है हमारे लिए इस तरह की योजनाएं लेकर आती हैं, तो इनका एक ही मकसद रहता है कि किसी न किसी तरह से बेटियों के जो पंख हैं उनको उड़ान मिल सके।
0: बिल्कुल, उड़ान मिल सके और वो ऊंचे आसमान तक अपने पंखों की उड़ान फैला सके।
1: जी, और वहीं ये भी बताना जरूरी है कि आवेदन कैसे किया जाए।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखिए ना, आप किसी भी अधिकृत वाणिज्यिक बैंक या अपने स्थानीय डाकघर शाखा के माध्यम से SSY खाता खोल सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर लड़की का जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक के KYC दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
0: और नेहा, इसकी अगर हम जमा सीमा की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये से, यानी कि कम से कम 250 रुपये, और अधिकतम की बात करें तो 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। जमा राशि 15 वर्षों के लिए जमा करनी होती है।
1: जी, तो देखिए ये तो जानकारी आपने साझा की हमने मिलकर अपनी सखियों से, और देखिए ना, जब भी कोई ऐसा बेहतरीन जानकारी हम लोग लेकर आते हैं तो दिल करता है कि एक तरह से सटीक जानकारी जो वो हर किसी के घर द्वार तक पहुंचाई जाए। अब जैसे इस योजना की ही बात कर रहे हैं तो कई सारी ऐसी सखियां होंगी जो कई सारे सपने बुनती होंगी कि हम भी अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे सकें, उनके सपनों को पूरा कर सकें। तो ये जो योजना है ये उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही कामगार है जिनकी बेटियां हैं।
0: बिल्कुल, यानी कि कोई बहन या कोई भी अभिभावक ये कभी ना सोचे कि हमारी बेटियां हैं। अरे, अगर आपकी बेटियां हैं तो आप तो डबल सौभाग्यशाली हुए ना।
1: जी, तो चलिए अब देखिए बातचीत तो चलती रहेगी, सिलसिला ये हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन मनोरंजन का भी हम पूरा
0: ख्याल रखेंगे। तो नेहा, सुनवा देते हैं अपनी सखियों को ये प्यारा संगीत।
1: जी,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जी, गीत के बाद और एक अंतराल के बाद फिर से स्वागत करते हैं अपने सभी सखियों का उनके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है वनिता मंडल।
5: और देखिए ना, गाने में एक छोटी सी पंक्ति आई थी कि गांव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं।
4: हाँ जी जी।
5: तो देखिए ना, अब जैसे बारिश का मौसम है, मॉनसून आने वाला
4: बिल्कुल,
5: है
4: बिल्कुल।
5: और कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं।
4: हाँ।
5: और वही हम हास्य के पात्र भी बन जाते हैं।
4: हास्य के पात्र बनते हैं नेहा। और सबसे मतलब जो एक सच बात बताऊं ना, हम उरे परे पहले देखते हैं कि मुझे किस किसने देखा होगा।
5: बिल्कुल। और जब कोई देख लेता है तो हमें लगता है यार ये तो बदनामी,
4: बेइज्जती हो गई।
5: चलिए, अब सखियां समझ ही गई होंगी कि जब मॉनसून की बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है, तो अगली जो जानकारी रहने वाली है वो शायद मॉनसून से ही संबंधित।
4: बिल्कुल। देखिए भाई, पलके बिछा कर इंतजार हम कर रहे हैं कि मॉनसून आएगा और ठंडी सी फुहारें और हर एक क्यारी, हर एक पेड़ पौधा, फूल, है ना, सब कुछ जैसे खिलखिला उठेगा, है ना। और साथ में खिलखिला उठते हैं हमारे मन
5: जी,
4: है ना, बड़े दिनों के बाद जब बारिशों का दौर आता है। लेकिन इस दौर के लिए भाई तैयारियां करनी पड़ती हैं,
5: क्योंकि ये जो मॉनसून है ये अपने साथ नमी, उमस और गंदगी, कई बीमारियां भी साथ लेकर आता है।
4: बिल्कुल साथ लेकर आता है। अब अपनी ही बात कर लीजिए, बारिश के बाद जब बच्चे एकदम से घर के अंदर आ जाते हैं तो भाई मूड खराब हो जाता है और हम बोलते हैं कि नहीं रुको, पीछे से ही आवाज लगानी है और हम देखेंगे कि किस तरह से उनको घर के अंदर ले आना है
5: जी, ताकि के लिए, हाँ, ताकि बहुत कोई बड़ी चुनौती है कि बच्चों को कैसे रोका जाए, घर को कैसे साफ रखा जाए। और देखिए ना, खास तौर पर महिलाओं में इस मौसम के दौरान कई तरह के जो लक्षण हैं वो भी देखे जाते हैं, जैसे त्वचा संक्रमण हो गया या फंगल इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, पाचन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं जो हैं वो
4: इन दिनों
5: होती हैं,
4: देखने को मिलती है बरसात के मौसम में। बिल्कुल
5: जी। और इनको नजरअंदाज करने से ये समस्याएं जो वो गंभीर रूप ले लेती हैं। ऐसे में महिलाओं को, सखियों को मॉनसून सीजन के दौरान विशेष सावधानी रखने की जरूरत है।
4: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, हमारी सभी सखियां जानती ही हैं, जिससे त्वचा लंबे समय तक नम रहती है, है ना, शरीर मतलब सूखता नहीं है जल्दी
5: जी, जी।
4: तो ये स्थिति फंगस, बैक्टीरिया और अन्य संक्रमणों के पनपने के का एक साधन बन जाता है और इससे शरीर के कुछ हिस्सों में जैसे आपके मतलब वो हिस्से जो ज़्यादातर ढके रहते हैं, जिनमें हवा नहीं मिलती है, है ना
5: जी।
4: तो वहाँ पर क्या होता है कि सिलवटें पड़ना शुरू हो जाती हैं, फंगस या बैक्टीरिया तेजी से पनप जाते हैं। यही कारण है कि इस मौसम में महिलाओं में त्वचा संबंधी संक्रमण जैसे खुजली हो गया, एलर्जी हो गई या अन्य और समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। पर्याप्त स्वच्छता ना रखने पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है
5: जी। और देखिए ना, उम्र के साथ साथ कई तरह की चुनौतियां आती हैं। अब किशोरियों की बात करें तो किशोरियों में हार्मोनल बदलाव और शारीरिक गतिविधियों के कारण पसीना ज़्यादा आता है, जिससे त्वचा जो है या स्कैल्प जो है हमारी, वो संक्रमण की संभावना जो है वहाँ बढ़ जाती है। अब युवा महिलाओं में व्यस्त जीवन शैली रहती है, काम का दबाव रहता है, अपने आप की देखभाल में कमी भी रह जाती है, जिस कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या हम कह सकते हैं कि ईस्ट इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं जो हैं वो ये आम हो जाती हैं। वहीं अगर बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो उनमें शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और देखिए ना, इनके कारण जो है वो संक्रमण का जोखिम जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। अब जब इस तरह की बीमारियां, जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा, तो ये सारी जो बीमारियां हैं इन्हें हम एक तरह से इन्वाइट ही कर रहे हैं फिर तो।
4: बिल्कुल, और देखिए ना, खुशहाल जीवन की तो कुंजी स्वास्थ्य ही है। अगर हमारी हर सखी स्वस्थ है तभी वो घर खिलखिला रहा है, हंस मुस्कुरा रहा है।
5: जी, और अगर इस तरह की रहती हैं कुछ प्रॉब्लम्स तो उनका एक ही सलूशन है, सावधानी।
4: बिल्कुल,
5: सावधानी ही बचाव है हर एक प्रॉब्लम का।
4: बिल्कुल, देखिए गर्मी और उमस से बचने के लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, सूती कपड़े पहनना चाहिए, पसीने वाले कपड़ों को तुरंत बदल दीजिए, और यदि बारिश में आप किसी कारण वश भीग गई हैं तो जल्दी से जल्दी कपड़े बदल लीजिए, सूखे कपड़े पहनिए, शरीर को अच्छी तरह से सुखाइए, और इस मौसम में भी खीरा, ककड़ी, तरबूज, हरी सब्जियां वगैरह खाते रहिए।
5: जी, और जैसे आपने बात की पूजा कि इस मौसम में कपड़ों को तुरंत बदलना चाहिए, क्या होता है अगर कभी हम लोग हल्के हल्के बारिश में भीग गए हैं तो हम क्या करते हैं, अमूमन हमारी आदत होती है कि चलिए अंदर गर्मी है, फैन ऑन कर लिया या एसी ऑन कर लिया, कूलर ऑन कर
4: और
5: लिया,
4: जल्दी से सूख जाएंगे,
5: चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बारिश का पानी है, जिसे अब हम लोग ये भी कहते हैं कि एसी ड्रेन
4: है,
5: तो वो जो पानी है वो अपने साथ कई तरह के केमिकल्स भी लेकर आया है, और वो आपके कपड़ों में अब वो रिसाव हो चुका है उसका, और आप उसी कपड़े को जो बिना धोए बिना चेंज किए आप उसको लंबे टाइम पीरियड के लिए अपने शरीर पर उसको लगाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो कहते हैं ना कि स्किन इन्फेक्शन जो है उसको इनवाइट कर रहे हैं। तो बेटर है कि आप इस तरह की सोच ना रखें कि चलो अब कपड़े सूख जाएंगे, हल्का सा फ़ैन ऑन किया, हल्के से गीले हैं। नहीं, आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कोई और नहीं आएगा, अपने से शरीर का ध्यान हमें खुद को ही रखना पड़ेगा।
4: बिल्कुल, और देखिए ना होता क्या है नेहा, जब बारिशें लगती हैं तो आवाज़ आती है अंदर से कि भाई चाय के साथ कुछ पकौड़े हो जाएं।
5: जी बिल्कुल, और ये तो हर किचन से आवाज़ आने वाली है आने वाले कुछ टाइम में
4: जी।
5: कि कुछ मौसम के हिसाब से कुछ तला हुआ बना दिया जाए, कुछ गरम गरम मज़ा लिया जाए।
4: जी जी जी, तो भाई ठीक है, कभी कभार तो भाई चाय के साथ पकौड़े बनते हैं, कुछ चटपटा मसालेदार बनता है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, क्योंकि ये भी इस मौसम में हमें नुकसान देने वाली चीज़ें हो जाती हैं।
5: बिल्कुल, और इस मौसम में हमें जैसे बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो जो खुले में बिकने वाले कुछ कटे फल होते हैं हमें उनको खाने से भी परहेज रखना चाहिए।
4: जी बिल्कुल, तो भाई स्वस्थ रहना ही मूल मंत्र है, गर्मी और उमस से जुड़ी अधिकांश समस्याओं से बचाव संभव है यदि महिलाएं व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद भी लें और साथ साथ में पर्याप्त पानी भी पिएं।
5: जी, और देखिए ना, मॉनसून तो अब दस्तक देने को तैयार ही बैठा हुआ है, तो इस मौसम में राहत और ठंडक जो है वो ये कहीं ना कहीं लेकर आता है, लेकिन हमारे घर पहले से अगर तैयार ना हो इस चीज़ के लिए तो ये सीलन, पानी का रिसाव, बिजली से जुड़े खतरे और कीड़ों की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस मौसम में।
4: बिल्कुल, देखिए ना, बरसात पूरे ज़ोरों पर होती नहीं कि सीलन की हम बोल सकते हैं कि स्मेल आना शुरू हो जाती है, है ना, और मच्छर भी देखने को मिलते हैं, वो मेहमान बन के हमारे घरों में आ जाते हैं बिना बुलाए, तो इस तरह की चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। हमें ये गौर ज़रूर देना है, रखनी है कि छत, पाइप या नालियों में पानी ना रुके।
5: जी बिल्कुल, और सखियों को हम ये भी बता दें कि हम इस विषय पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन क्या होता है, हम हाउसवाइफ हैं, हम घर से काम करती हैं, घर के ही काम करती हैं, तो ज़्यादातर तो हम ही रहते हैं घर पे, तो हम लोग इसलिए इन विषयों पे चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ही ये चीज़ें महसूस होती हैं क्योंकि हम ज़्यादा घर पे रहने वाली हैं।
4: जी,
5: तो इसलिए इन विषयों पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मानसून देखिए अब आने वाला है, अपनी छत की अच्छी तरह से जांच करना ज़रूरी है।
4: आपने ये देखना है कि छत के कौन से हिस्से में पानी रुकता है, है ना, अगर आपको एक बार पता चल गया है तो वहाँ पर पहले ही आप कोई सावधानी बरतिए या उसका आप कोई समाधान निकाल लीजिए ताकि वहाँ पर पानी जमा ना हो, आपके घर को नुकसान ना हो, और उस जमा हुए पानी में मच्छर जो है वो तैयार ना हो
5: जी। और बरसात के मौसम में हवा में नमी बढ़ने से बिजली का करंट लगने की समस्या या फिर शॉर्ट सर्किट या उपकरणों में जंग लगने का खतरा जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सखियों से ये भी विनती है कि समय रहते अपने सॉकेट और जो वायर है उनकी जांच करवा लें। यदि कोई तार पुराना या खराब हो तो उसे इलेक्ट्रिशियन से बदलवाने की जो है वो आप सोच सकते हैं। वहीं कुछ इंसिडेंट आपने सुने होंगे पूजा जी,
4: जी
5: कि जैसे खेतों में हम लोग पेड़ों पे बरसात के मौसम में पशुओं के लिए चारा लाना है, पेड़ थोड़ा सा वो छंटाई करनी पड़ती है हमें, और कई बार क्या होता है कि पेड़ इन दिनों काफ़ी उनमें पत्ते लग जाते हैं, काफ़ी उनकी जो टहनियां हैं वो खूब सारी बढ़ जाती हैं और वो इतनी फैल जाती हैं कि वो कहीं ना कहीं बिजली की तारों को भी छू जाती हैं। और आपने इंसिडेंट ऐसे सुने होंगे कि जो कोई औरत थी पेड़ पर चढ़ी, उसने जैसे ही उस टहनी को छुआ उसको करंट लगा और वो एकदम से मर गई। तो अगर आप इस तरह के कभी काम करने जा रही हैं तो पहले जांच परख कर
4: बहुत ज़रूरी है। आपने पेड़ की बात की, बहुत अच्छी जानकारी सखियों को दी। देखिए ये ऐसी तारें अगर आपके घर के आसपास भी हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, देखिए बच्चे अनजान होते हैं, हमें समय समय पर उनको भी समझाते रहना है। बच्चे खेल खेल में अनजाने में ही वायर्स को टच करते हैं या उनसे झूल जाते हैं या खेलने की कोशिश करते हैं, तो भाई बहुत सहजता के साथ बहुत जागरूक होकर के आप बरसात का आनंद लीजिए, उसका स्वागत करिए।
5: और बरसात का आनंद तो हम लेंगे ही, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम के इस आखिरी पड़ाव में हम गीत का भी आनंद ले लें।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कहते हैं अपनी सखियों को
1: नमस्कार।
2: वनिता मंडल, वनिता मंडल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता मंडल। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाई बहनों, जय हिंद। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपकी सेवा में लेकर आपका अपना कार्यक्रम नाम है सैनिकों के लिए। पेशे खिदमत है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: सैनिक भाई बहनों, अगला गीत है मुझे कुछ कहना है फिल्म से। मिली जुली आवाजें इस गीत में आप सुनेंगे प्रीति, पिंकी और बाबिल सुप्रियो की।

सैनिक भाई बहनों, अलका याग्निक के स्वर में अभी आपने फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म से ये गीत सुना। और ये है कार्यक्रम का अंतिम गीत जो लिया गया है तेजाब फिल्म से। स्वर हैं अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल के।

सैनिक भाई बहनों, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न होता है। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजा है। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमी, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई, इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव, वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़, आसमान, जमीन, ओ हो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? और हां, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं? और जब छाते हैं बदरा, आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए, बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

ये सुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और यह खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहां सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसें, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं, सफ़ेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की ये कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहाँ पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये हैं हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहाँ चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज़ चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए, पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो शुरू हो जाइए, किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था। वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट। और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मेरे मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफ़ी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी ज़रूर पकड़ कर रखते थे। रफ़ी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मज़ा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़ कर पीस कर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो ज़रा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था न जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा, ना आसमां का पता हो न जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहाँ पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहाँ कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मज़े लें। इसके अलावा एक और श्रोता है वो लिख रही हैं कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतज़ार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक ज़रा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मज़े लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहाँ बेसब्री से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक ज़मीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मज़ा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गाँव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और ख़ास त्यौहारों पर उड़ाते हैं।

बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता

तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होंठों पर आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है, आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है।

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना ख़त्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ, आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आरे बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना, लपक झपक तू आरे बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता हैं जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है, तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही है।

कि किसने तरह के गाने हमारे अलग अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही है कि इतना समय ही कहाँ कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाई गर्मी उफ गर्मी, यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे। और इसके अलावा कई और श्रोता हैं जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतज़ार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो, चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो हलाकान या परेशान, पर कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं, कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं, बरखा रानी ज़रा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज़ में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाज़ें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता को ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर ज़रा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी। जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नज़र आती थी जब आसमान में ऊँचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि 10वीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था, जब मैं कोचिंग जा रहा था, रोड के किनारे काफ़ी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूँ। लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं। इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज़ की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओ हो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज़्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियाँ एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार, पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताज़ा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताइए।

भाई ये गाना ख़त्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना। कागज़ की कश्तियों का वो पुराना, वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, वो सौंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफ़र की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने ज़माने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफ़र आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: and some parts of northeastern India. IMD said conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, and Uttarakhand in the next 3 to 4 days. The Met Department has also forecast heat wave conditions at isolated places over Jharkhand and East Uttar Pradesh today. Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in various parts of the country today. The day marks the martyrdom of Hazrat Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad. Hazrat Imam Hussein laid down his life for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Taziya processions are being taken out to mark the occasion. Prime Minister Narendra Modi today recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussein in a social media post. He said Hazrat Imam Hussein continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice. In Delhi, Muharram processions are being held in different locations, including Jama Masjid, Nizamuddin, Okhla and Mehroli. In men's cricket, India will take on hosts Ireland in the first T20 international of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. The series marks the start of a new T20 cycle for India, who will be playing its first T20 international since lifting the T20 World Cup. Captain Shreyas Iyer will lead a young squad that includes 15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान. कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा. उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया. भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया. T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से. टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें. और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया. अब समाचार विस्तार से. गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। पर मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
5: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
5: 60,000 students. जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
6: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर 3 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
8: याद आए, बहुत

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

0: बीते हुए दिन
1: किशोर कुमार की आवाज में दूर गगन की छांव में फिल्म का गाना था।

मथुरा के पतवा सरी के डोले मनवा कि हियारा में उठे तहिलो। अरे पुरुआ के झोंकवा में आई

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था, अनजान की बोल थी, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
4: अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, दिन के 3 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लंबित व कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़ में उसका 7.19% का वैधानिक हिस्सा प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक अतिरिक्त हिमाचल सदन के निर्माण की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई दशक पहले बना वर्तमान हिमाचल भवन अब राज्य के लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से संबंधित लंबित पड़ी देनदारियों के जल्द निपटारे को लेकर भी विचार विमर्श किया। नशा मुक्त अभियान के तहत आज प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर शिमला में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और नशा तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
1: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे को लेकर विशेष अभियान चलाया है और वाकाथोन के जरिए, बहुत सारे सेमिनार्स के जरिए और यहाँ तक कि कानून भी जो है बदला गया है हिमाचल, और इसको बड़े सख्ती से किया गया है। पूरे प्रदेश के पंचायतों में मैपिंग की गई है कि कहाँ पर इसका ज्यादा मेनेंस है। इसमें जो है बहुत सारे कदम उठाए गए, खासकर जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिसमें पुलिस विभाग के लोग भी शामिल पाए गए, उन सबके ऊपर कड़ा जो है संज्ञान लेकर कड़े फैसले लिए गए, उनको नौकरियों से भी निकाला गया है। तो हिमाचल प्रदेश में

0: इस कार्यक्रम में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाने सहित लोगों को समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया। अभियान के तहत लोगों को राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय शूलिनी मेला आज से शुरू हो गया है। मेले के शुभारंभ पर ठीक इसी समय शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। शूलिनी मेले के चलते सोलन शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट परियोजना की भूमि अधिग्रहण का करीब 85% कार्य पूरा कर लिया गया है और सभी भूमि अधिग्रहण अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। प्रशासन द्वारा अब जल्द ही अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांगड़ा पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि प्रभावित परिवारों के राहत व पुनर्वास की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत पुनर्वास व पुनर्स्थापन सहित अब तक करीब 2,200 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रभावितों को वितरित की गई है।
1: अभी तक बजट इंक्लूडिंग रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट का है, वो जो वन टाइम सेटलमेंट में अभी तक हुआ है ऑलमोस्ट 2,200 करोड़ के आसपास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और जो अलग कैटेगरीज में फैमिलीज आती हैं, जैसे प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज है, वो 942 के आसपास की संख्या जो थी वो पहले थी, अब उसमें जो है वो कुछ काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, उसको लैंड एक्विजिशन कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर R&R के लेवल पे जो है देखा जाना है। और जब वो क्लेम्स सारे सेटल हो जाएंगे उसके बाद एक्चुअल फिगर जो है वो उसके हिसाब से आगे जो कंपनसेशन का है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। वाचक स्वर नविता चौहान।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव पारित करके की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस का उद्देश्य नशे की लत और इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिन विभिन्न संगठनों और सरकारों द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाए जाते हैं, जिनमें जन जागृति कार्यक्रम, शिक्षा अभियान और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होती हैं। ये दिवस हमें नशे से मुक्त स्वस्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है और युवाओं को नशे की बुरी आदतों से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है। 1989 से 26 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस घोषणा को अपनाया गया था। सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई के महत्व को चिन्हित करने के लिए एक वार्षिक दिवस मनाया जाना चाहिए। इस दिन को विभिन्न देशों के लोग एक साथ मनाते हैं। जैसे जैसे नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ता है, ये दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग एक वैश्विक चुनौती बनी हुई है, जो चुपचाप लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, परिवारों को तोड़ रही है और समुदायों को कमजोर बना रही है। इसका प्रभाव नशे की लत से कहीं आगे तक है। यह स्थायी तौर पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंचाता है। इसी बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने, निवारक उपायों को बढ़ावा देने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग व तस्करी को रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए वैश्विक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया गया है। इस वर्ष संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के चक्र को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने केंद्रित और संगठित दृष्टिकोण के साथ मादक पदार्थों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त देश के सपने को साकार करने के लिए युवाओं और जनता के बीच जागरूकता फैलाकर इस लड़ाई को जन आंदोलन में बदलने की जरूरत पर बल दिया है। नशा मुक्त भारत अभियान जैसी जन केंद्रित पहलों के साथ भारत एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशा मुक्त भविष्य निर्माण की दिशा में दृढ़ कदम उठाना जारी रखे हुए है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की गई है। ये क्विज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ तथा नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर आइए हम सभी नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लें। नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक बनता है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, उन्हें शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए मिलकर इस मुहिम को सफल बनाएं और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करें।
3: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:10 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, लेकिन
0: पूनम जी क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो मतलब बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ जी
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब तो बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है। एक
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का। मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हालचाल
1: जी
0: है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि
1: सही
0: आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी, घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है।
1: जी
0: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में।
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। मैं रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाते भी
1: भारती
0: हैं?
1: बहुत ज्यादा सुनती हूँ।
0: विविध,
1: बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
0: जी, और गाते भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ। देवी
0: सुनाइए।
1: जी के मंदिर में लट से बाहरी आई, देवी जी के मंदिर में

0: जी मांगी आई देवी जी की मंदिर में लट शिवा आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
0: जी।
1: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: फिर जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: कोई भी सुना दीजिए।
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं
1: जी
0: में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें, ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सही जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमल कसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: हाँ हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहाँ पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहाँ जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है
1: यह
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
1: जी
0: जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का काम
1: जी
0: करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: हाँ
0: आपको भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
1: जी,
0: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है, और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है, और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ,
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: और
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: मुझे
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है, और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी, जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी

ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से।
0: हिसार, हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी, विविध
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर पे कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत की जिंदगी, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीज भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक रोज किया, अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
1: मुझे
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितने भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
1: जी जी
0: हम योग करते हैं ना तो हमारा देखा सीखे बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
1: में।
0: गीत।

0: दुनिया को।
1: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार हैं, 400-24662, फिर से 400-24662, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फ़ोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फ़ोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
2: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया की कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम बाजू।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिल फेंक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहाँ दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट।
2: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति SIT का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित वरीले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे पहाड़ी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। युवमंच कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। 7:05 पर आपको सुनवाएंगे फिल्मी भजन। 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रौनका गराइंदियां। 7:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। चांदनी रातें कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। और देर रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:08 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पहाड़ी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक शांति का माध्यम है ये भजन, तो आइए इस भक्तिमय संध्या की शुरुआत करें।

0: जोगिंदर बल्ला और साथियों की आवाजों में माता रानी की ये भेंट अभी आप सुन रहे थे। अगला भजन सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: इस अंतराल के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, ये भजन सुनते हैं।

0: जहाँ श्रद्धा के स्वर गूंजते हैं वहाँ परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। ईश्वर का स्मरण मन को शांति, हृदय को आनंद और जीवन को प्रकाश प्रदान करता है। शेर सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये भजन आपने सुना। अगला भजन आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस अंतराल के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आइए सुनते हैं करनैल राणा का गाया ये भजन।

ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने के लेते हैं आपसे इजाजत। अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवमंच।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार, हमीरपुर। 145 सालों से कश्मीरी सन ज्वेलर्स के गहने आपकी खुशियों और हर खास मौके की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहां हर अवसर के लिए कुछ खास है। गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन ज्वेलर्स। संपर्क करें 9418000363।
4: युवा साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? हम तो हर समय यही प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से कि हमारे युवा साथी एकदम तंदुरुस्त हो और अपने सपनों को ऊंची उड़ान दे रहे हों। युवा साथियों, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं एक बेहतरीन कविता के साथ, जो है आपके लिए खास। तो गौर फरमाइएगा, युवा शक्ति तुम देश की शान हो, उम्मीदों भरा एक नया आसमान हो। मत खोना खुद को नशे की राहों में, तुम छुपे हो लाखों नई संभावनाओं में। नशा देता है पल भर का झूठा सुकून, छीन लेता है जीवन का खूबसूरत जुनून। जो कदम बढ़े हैं मंजिल पाने के लिए, उन्हें मत रोकना किसी बहकावे में आने के लिए। कलम उठाओ, कलम उठाओ, सपनों को आकार दो, मेहनत की राहों पर अपना नाम साकार करो। खेल, शिक्षा और संस्कार अपनाओ, तुम अपने जीवन नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम तुम्हारी मुस्कान में देश का भविष्य है, तुम्हारे हौसलों में नई सृष्टि का दृश्य है। आओ मिलकर ये संकल्प उठाएं, नशे को छोड़ नई राहें बनाएं, नशे को

हर वर्ष लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं नशा एक ऐसी बीमारी है जो युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में लेकर उसे कई तरह से बीमार कर रही है। शराब, सिगरेट, तंबाकू एवं ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग एक बहुत बड़े नशे का शिकार हो रहे हैं। आज फुटपाथ और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे भी नशे की चपेट में देखे जा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर सोचा जाता है कि बच्चे कैसे नशा कर सकते हैं जिनके पास खाने को भी पैसा नहीं होता, परंतु नशा करने के लिए सिर्फ मादक पदार्थों की ही जरूरत नहीं होती। कई इस तरह की चीजें हैं जिनसे नशा किया जा रहा है जो बेहद खतरनाक हैं, जैसे व्हाइटनर, नेल पॉलिश, पेट्रोल की गंध, विक्स, ये झंडुवाम इत्यादि। नशे की लत ने इंसान को उस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों कि अब व्यक्ति मादक पदार्थों के सेवन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह नशे के लिए जुर्म भी कर सकता है। नशे के मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। महिलाओं द्वारा भी मादक पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जा रहा है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तनाव, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन व अन्य कई कारण हैं जिनके चलते महिलाएं भी नशे की लत में पड़ गई हैं। दोस्तों, रिसर्च में ये देखा गया है कि वह हर चीज जिसकी आपको लत लग जाए नशे की श्रेणी में ही आता है। ऐसी ही कुछ आदतें हैं जिन्हें छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है, जैसे चाय, कॉफी, ये वर्तमान समय के नवीन यंत्र जैसे वीडियो गेम्स, स्मार्टफोन, फेसबुक आदि का ज्यादा मात्रा में उपयोग भी नशे की श्रेणी में आता है। दोस्तों, मादक पदार्थों के सेवन से सबसे बड़ी हानि स्वास्थ्य की हानि है। इससे आपके शरीर के कई अंगों पर एक साथ विपरीत असर पड़ता है। खास तौर पर यह आपके दिमाग को अपनी चपेट में ले लेता है। नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है और मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है। दोस्तों, नशा करने वाला व्यक्ति सदैव अपने ख्यालों में ही रहता है। उसे अपने आसपास के माहौल से ज्यादा मतलब नहीं होता। नशा करने वाला व्यक्ति आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तौर से कमजोर होता जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति अपने समाज एवं परिवार से बिल्कुल दूर हो जाता है। नशा करने से दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। तो युवा साथियों, ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, अनमोल है, और ये भी सभी जानते हैं कि जीवन बार बार नहीं मिलता। तो जिंदा दिली के साथ इस जीवन को जिया जाए, सपनों को ऊंची उड़ान दी जाए और अपने हुनर को भी पंख दिए जाए। जी हाँ, नशे से कोसों कोसों दूर रहिए और औरों को भी जागरूक रखिए। इसी जानकारी के साथ और इन्हीं बातों के साथ आइए रुख करते हैं मनोरंजन का और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

युवा साथियों, गीत के बाद फिर से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है युव मंच। गीत सुनवाने से पहले हम बात कर रहे थे बहुमूल्य जीवन की। जी हाँ, कितना खूबसूरत होता है जीवन जब हमें सभी संसाधन मिलते हैं, जब हमें बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, जब हमारे सपने साकार होते हैं, तभी लगता है ना कि ये जो जीवन है ये कितना खूबसूरत है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये जीवन इतना ही खूबसूरत सभी का है? जी नहीं, बहुत बड़ा ऐसा वर्ग जिसको यातनाएं दी जाती हैं, जिसको सताया जाता है, तड़पाया जाता है। जी हाँ, हम इशारा कर रहे हैं आज खास दिवस की ओर, और ये है यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हाँ दोस्तों, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यातना के अघन्य अपराध को कम करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना और दुनिया भर के पीड़ितों व बचे हुए लोगों को सम्मान तथा समर्थन प्रदान करना है। दोस्तों, बात करें कि कब से ये दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताएं 12 दिसंबर सन 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था और इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून 1998 को मनाया गया था। 26 जून 1987 को यातना और अन्य क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन लागू हुआ था। आज भी इसको मनाने का उद्देश्य यातना के शिकार हुए लोगों के पुनर्वास और अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को एकजुट करना है और विश्व स्तर पर मानवीय यातना के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करना है। तो आइए हम भी ये प्रण लें कि हम किसी को भी नहीं सताएंगे, कभी भी नहीं, और अगर कोई ऐसा है तो उसे इस यातना से मुक्ति दिलवाएंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार, हमीरपुर। 145 सालों से कश्मीरी सन ज्वेलर्स के गहने आपकी खुशियों और हर खास मौके की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहां हर अवसर के लिए कुछ खास है। गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन ज्वेलर्स। संपर्क करें 9418000363।
4: युवा साथियों, कमर्शियल कम म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चहेते कार्यक्रम में, जिसका नाम है युव मंच। दोस्तों, जब भी आप कोई टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है काउंसलिंग, और उसके बाद एडमिशन। और ये प्रक्रिया बहुत ही अहम रहती है, क्योंकि केवल रिजल्ट आने से सीधे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए छात्रों को अपने स्कोर का विश्लेषण कर कट ऑफ, सीटों की उपलब्धता और प्रवेश रुझानों को देखकर कॉलेजों का चयन करना होता है। साथ ही बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए अन्य विकल्प भी तैयार रखने होते हैं। जैसे आपको बताएं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित CUET UG 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो दोस्तों, इसके चलते काउंसलिंग के लिए केंद्रीय, राज्य और निजी विश्वविद्यालय अलग अलग प्रवेश प्रक्रियाएं चलाते हैं। इसलिए छात्रों को अपनी पसंद के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर नोटिस, पंजीकरण तिथि और सीट आवंटन की जानकारी नियमित रूप से देखते रहना चाहिए। कई छात्र गलती से CUET की परीक्षा को ही एडमिशन मान लेते हैं, जबकि ज्यादातर विश्वविद्यालय में अलग से पंजीकरण करना जरूरी होता है, जिसमें व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के साथ CUET विवरण भरना होता है। दोस्तों, काउंसलिंग प्रक्रिया के छात्रों को अलग अलग कॉलेजों और कोर्स की अपनी पसंद भरनी होती है। इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर बाद में सीट मिलती है। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा विकल्प भरें और सिर्फ बड़े या लोकप्रिय कॉलेजों पर ही निर्भर ना हो। अपनी रुचि और भविष्य के करियर को ध्यान में रखकर कोर्स चुनें। पिछले साल की कट ऑफ को देखकर ये समझें कि आपके

अंकों के आधार पर किस कॉलेज में प्रवेश मिलने की संभावना है। इसके बाद अपनी संभावना के अनुसार सही क्रम में अपनी पसंद की सूची तैयार करें। दोस्तों, उम्मीदवार की श्रेणी, उपलब्ध सीटों और छात्रों द्वारा भरी गई पसंद के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बाद सीट आवंटन किया जाता है। सीट मिलने पर छात्रों के पास आमतौर पर तीन विकल्प होते हैं। पहला, मिली हुई सीट को स्वीकार करना। दूसरा, बेहतर विकल्प के लिए अगले राउंड का इंतजार करना। और तीसरा, सीट को अस्वीकार करना। हर विश्वविद्यालय के नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, काउंसलिंग के समय सभी जरूरी दस्तावेजों का सही और पूर्ण होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कमी या गलती से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सीट आवंटित होने के बाद निर्धारित समय के भीतर फीस जमा करना भी जरूरी है, अन्यथा सीट रद्द हो जाती है या हो सकती है। यदि पहले राउंड में सीट नहीं मिलती तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई विश्वविद्यालय अतिरिक्त मेरिट लिस्ट, स्पॉट एडमिशन और अन्य काउंसलिंग राउंड के माध्यम से भी प्रवेश अवसर देते हैं। तो जरूरी बातों का ध्यान रखें दोस्तों। सभी विश्वविद्यालयों की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। ईमेल और मोबाइल नंबर अपना एक्टिव रखें। सभी दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें। केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। तो इन्हीं जानकारियों के साथ और इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, आज का युव मंच का समय यहीं पर पूरा हो रहा है। इसी वादे के साथ कि कल इसी समय इसी कार्यक्रम में होगी आप लोगों से भेंट। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युव मंच, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार, हमीरपुर। 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपकी खुशियों और हर खास मौके की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर अवसर के लिए कुछ खास है। गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स। संपर्क करें 9418000363।
0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी निवारण दिवस को एंटी चिट्टा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा में बताया कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष से एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे जैसी सामाजिक बुराई के नाश के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। इस दौरान एंटी चिट्टा जागरूकता रैली को भी रवाना किया गया। इस बीच कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने आज शिमला में एक कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश में भविष्य में होने वाली सभी सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इस अभियान में सभी जिला उपायुक्तों की परफॉर्मेंस भी आंकी जाएगी।
1: दो चीजें की जा रही हैं। एक, जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा, यह भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी है उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस तरह से नंबर दिए जाएंगे।
0: इस अवसर पर प्रदेश के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि चिट्टा रोकने के लिए प्रदेश पुलिस केंद्रीय और अन्य बड़ी एजेंसियों के साथ तालमेल से कार्य कर रही है। इधर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने शिमला में नशे के दुष्प्रभावों व राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। विभाग के सचिव सीपी वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में नशा समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने युवाओं से खेल, शिक्षा, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान करते हुए नशे से दूर रहने पर बल दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार का अधिकार व पारदर्शिता, काम का भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान हैं और इसके अलावा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खत्म हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जी राम जी योजना 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के नाम पर झूठ बोलकर प्रदेश के हितों को दांव पर लगा रही है। जयराम ठाकुर ने सरकार को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की दिशा में कार्य करने की सलाह दी है। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने परंपरा के अनुसार मां शूलिनी की पालकी का विधिवत स्वागत किया और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। धनीराम शांडिल ने कहा कि मां शूलिनी को समर्पित ये उत्सव समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है।
2: शूलिनी मेले के इस पावन अवसर पर सभी सोलन वासियों को, प्रदेश वासियों को, मैं तो कहता हूँ देश वासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में डिक्लेयर हो चुका है। ये मेला जो बहुत ही पुराना मेला है, हमारी धर्म और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है।

0: हमारी विरासत, ये मेला पुरानी परंपराओं को आगे लेकर बढ़ता आया है।
1: शूलिनी मेले के सफल आयोजन के लिए सोलन जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। इस मेले के दौरान होने वाली सांस्कृतिक संध्याएं, खेल व अन्य गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और दोपहर बाद से कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापक वर्षा हुई है। इसके अलावा राज्य के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। इसी के साथ समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

सफर सुहाने, गाने नए पुराने, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। नए पुराने गानों के आज के इस सुहाने सफर के आइए करते हैं शुरुआत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाइड फिल्म से ये गीत आपने सुना। अगला गीत आइए सुनते हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, फिल्म है अलग अलग।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको।

0: पुराने गीत यादों को जगाते हैं, नए गीत उम्मीदों को सजाते हैं। हर गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है जिसे हर दिल बिना शब्दों के समझ लेता है, है ना? और यही है संगीत का अनमोल सफर। इस सफर को आगे बढ़ाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
9: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। इस सफर में अब आइए आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना। फिल्म थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं दिल तो बच्चा है जी फिल्म से, जिसे गाया है मोहित चौहान ने।

जी, यादों की महक और आज की ताजगी दोनों का अपना अलग ही रंग होता है। हर दौर की अपनी पहचान होती है और हर पहचान की अपनी एक मधुर गूंज, और जो दिल को छू जाए वही हर दौर में अपना बना रहता है। तो अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में ये गीत, जिसे गाया है वरुण जैन और साथियों ने। फिल्म है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

0: इसी के साथ नए पुराने गानों का आज का ये सफर अब यहीं संपन्न होता है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
7: HIV AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
8: हिमाचल प्रदेश राज्य AIDS नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने, FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।
9: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सारे ही किसान कने बागवान भाई भेण जो मेरा यानी गुलाबो दा कने मेरे न सौगी
10: रमादा प्यार परिया नमस्कार।
9: राम राम। होर सुना भाई रामा, क्या क्या काम कार जे से आजकल नवाड़ी दे?
10: गुलाबो बुबू काम कार ता एड़े ना पी खेत जबाई तुए छलियां
9: और
10: ता छलियां दी करने चलुई नंदाई कने नंदाई सौगी सौगी जे आस है जे हां दे माड़े मोटे खेतर तिने जे अहा का कू बांधे ना तिने का कू जमया या फिर तेरा जा खड़ैटियां पेठी थोड़ी जी सफाई रही गोदी तिना साफ सफाई करा दे।
9: भाई देखना हुन बरसात पई ते काम कार जैसा तो मुकना ही नहीं है ना। कने इबे छलियां भी जे आस है छोड़ी आहे बाईतियां भी आन पे पहले तो दे हुंदा पे बड़ी बत्तर नाल दे पे खरी बत्तर हो जांगी ता छलियां बहणियां ही
10: आहो।
9: इबे छलियां भी बगते बाईतियां कने देड़ा बीच बीच बेके छेके बरखा भी हुंदी रह दी भी तो छलियां जे से हुन निकलना लगी पई है भई आन ता देड़ा पे कुती कुती जे आस आल ओड भी देते भी आन कुती कुती जे आस नदाईयां जे आस शुरू करतियां भी आन खेतरां दियां करना।
10: हां जी,
9: क्योंकि देख मौसमां दा ता पता लगदा नहीं आ।
10: बिल्कुल अजकल ता मौसम दा एड़ा हिसाब है ना पई कुती एकदम बरखा पई आ दी कने कुती जे ऐसा बरखा होवा दी नहीं।
9: हाओ कने तापमान भी रोजा ते रोज जे ऐसा घटा दा कने कदी कदी जे ऐसा कबल्ले धुप्प होदा ता तापमान जे ऐसा कबल्ले बढ़िया दा भी आया।
10: कने दिखा गल करिए पई तापमान दी अजके दी ता अज जे ऐसा ज्यादा ते ज्यादा रिया 35°C कने घट ते घट रिया 26°C।
9: आओ कने बदलो खदे हो ही रहदा भी इस बदला ते तमे भरी आओ ना परमात्मा ता खरा।
10: आहो
9: पर इबे एक शुक्र होया
10: पे
9: छलियां जे बाईया ना तो तिसते बाद जे ऐसा बेथाए बरखा नहीं हो ना हर साल के होंदा पे बस पिछले दिन छलियां बाणियां कने अगले दिन कबल्ली बरखा हो जानी वो डर लगी आंदा था खेतरे।
10: ठीक ला दे कने है मुल्खां दा का जमदा हा पे।
9: हां हे बदेड़ा पे बरखा जे छलियां बाणे ते थोड़े कर दिना बाद होईयां भी आना तो छलियां जे से खरियां निकली आईयां भी आना हुन कई के तो बड़े भगत बाईतियां दिना तो लोड लाड भी देते।
10: जी जी बिल्कुल ठीक ला दे अंत कई तो तीन तीन चार चार पत्तरी जे ऐसे कोई गोदी छली ना कने कई किनारे जे ऐसे हल छोटी छोटी तिथी जे ऐसे हल छोटी नदाई करा दे लोग।
9: हां कने कई दड़े खेतर हुंदे तिना जे

0: हाँ यह योजना ने जुड़ी ने जी आसे ले सकते भी अन्न कने फिर भी अगर अंजो नहीं पता लगो भी तो अहाँ कृषि विभाग ते जी आ यह योजना के बारे में जानकारी ले सकते कने फिर भी अगर कोई समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर जो अहाँ कॉल करने जी आसे पता लगाई सकते भी अन्न।
1: बिल्कुल जी, तो दिखा पे ही कोई भी जानकारी यही थी हदे बारे चीज़ ऐसे हाँ जो जांच पड़ताल जैसे जरूर करना चाहिए ताकि हाँ जो समय रहन दे यहाँ ती योजना का फायदा जैसे ले सकन। कहने हूँ जैसे कार्यक्रम च फायदा लेना हाँ एक बांके जे लोक गीत दा
0: जी।

0: लिया जी, ये तो सुने है मिठड़ा जी लोक गीत कने हुन जैसे कार्यक्रम खेतीबाड़ी च जैसे हाँ गलबात करनी है कि खीरे दी उपज दी जे आस है एक मुख्य व्यवसाय भी हो सकदा ये या
1: किसान कने बागवान भाई भैनों दिखा हाँ कद्दू वर्गी सब्जियां जी आस है लगाते भी हैं, यानी बेली वाली सब्जियां अगर हाँ तीन लगाई दी इन्हें अजकल करेला हो गया, कद्दू हो गया, घीगे हो गया भी आया, स्क्वैश हो गई भी पई कई किस्म दियाँ सब्जियां जी इसे अजकल हाँ लगाई दी भी हैं।
0: जी
1: तो तिना ची एक मुख्य जड़ी आंदी फसल रहती सह खीरा रहा भी है पे खीरा जी आस अह जरूर जी आ है अजकल लगाते भी हैं भई एक तो दिखा आंदे दैनिक आहार का एक मुख्य बिंदु रहा भी आ।
0: जी
1: अजकल गर्मियां तो गर्मियों से आंदे शरीर च पानी की कमी हो जाती भी, तो यह जो पूरा करने वास्ते जी आस अह सलाद के रूप जी अस खीरे का इस्तेमाल जी अस कर लेंदे भी हैं। कहीं गर्मियों से तो खीरा जी अस अह उगाते भी हैं, पर हूँ बरसाती के टाइम भी जी अस अह खीरा जी अस अपने खेतर च जी अस लगा देते, कई बार खड्डा नाले कंढे जी अस अह लगा देते भी हैं, पानिया नेड़े जी नलकिया नेड़े जी अस अह लगा देते भी हैं, क्योंकि पानिया नेड़े क्या होंगे भाई यदा फैलाव जो असा भी ज्यादा होंगे कहीं इसते फल जी असा भी अह जो ज्यादा मिलते भी हैं।
0: बिल्कुल कने इसका जी असें खास कर हाँ सलाद के रूप च इस्तेमाल जी असें करते हैं, कच्चा जी असें जो नमक मिर्च लगाई करने भी खाना पसंद करते हैं। खीर का सर्वश्रेष्ठ गुण यही है कि इस जी असें पानी की मात्रा अत्यधिक होंगी है, 96% तक जी असें इस पानी पाया जाता ही है ताकि ये हमारे शरीर च जी असें पानी की कमी जो भी पूरा करता ही है।
1: बिल्कुल दिखा इस चीज 0.4% प्रोटीन हुंदा, 0.1% बसा, 0.3% खनिज तत्व, 0.4% रेसा, कने देड़ी देड़ी बड़ी ज्यादा चीजा जी इसे इस चीज हुंदियां भी हैं। तिसते क्यों हुंदा भई आंदा शरीर जी आ तिस जो भरपूर पोषण भी मिली आंदा, कने आंदे शरीर च जी आस है पानी की कमी भी नहीं हुंदी भी।
0: बिल्कुल
1: तो कई बार क्या करते हाँ भई तीन जे बरखा होन हुई भी आना, तो इस टाइम जी अस अह खीरे की बिजाई जी अस करी सकते भी हैं, है ना।
0: जी जी
1: तो अगर अह खीरे दियाँ खरिया किस्म लगानिया होंदिया जी आंदे निचले पहाड़ी इलाके हैं ना इन्हें ची, तो तिना ची एक किस्म है पाइन साइड।
0: जी जी पाइन साइड किस्म जे इस है एक गहरे हरे रंग दे जे ऐसे खीरे होंगे हैं, इन्हों की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होंगी है, ये 60 दिनों के बाद जे ऐसे हाँ इसकी पहली तुराई कर सकते हैं, यानी कि ये तैयार हो जाते हैं 60 दिनों बाद। इसकी औसत उपज की गल करिए 120 से 125 क्विंटल प्रति हैक्टर के हिसाब करने जे ऐसे हाँ जो उपज मिली आती है, कने ये घट दिनों जे ऐसे छोड़ तैयार होने वाली किस्म जिस मनी जाती है।
1: बिल्कुल कहना एक किस्म है KH1,
0: जी
1: एक किस्म जी ये संकर किस्म है, इस दे फल नरम होंगे कने हल्के रंगा दे भी होंगे, कने इन्हें लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होंगी, कने ये छोड़ तैयार होने वाली किस्म है, लगभग 2 महीने ची जी आ इसते अह पहले तुड़ाई कर सकते भी हैं, कने यह किस्म से अह 350 से 400 क्विंटल पुआजा जी अस एक हैक्टेयर जमीन ची ले सकते हैं।
0: जी इसके अलावा जी असें खीरा हाइब्रिड 2 जी इसे भी एक अच्छी किस्म जी इसे मनी जाती है, ये ठंडे क्षेत्रों की एक बड़ी ही उपयुक्त कने एक नई संकर किस्म जी इसे मनी जाती है। इसके पौधे लगभग 5 मीटर लंबे होंगे हैं, शाखाएं जी असें 4 से 5 जी असें होंदियां हैं, कने फल जे ऐसे इस 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे लगते हैं, हरे बेलनाकार जे जे ऐसे फल होंगे हैं, कने ये 40 दिनों तैयार हो जाती है। कने इसकी औसत उपज की गल करिए 550 से 600 क्विंटल प्रति हैक्टर च जे ऐसे इस उपज जी से हाँ जो मिलती है।
1: जी बिल्कुल, कने अगर खादें की गल करिए अगर अह खीरा लगाना हो तो एक हैक्टेयर जमीन ची अह 250 क्विंटल जी अस गोहे की गली की सड़ी की खाद पानी, 400 किलो तिशी कैन पानी, 315 किलो सुपर फास्फेट, कने पोटास 100 किलो जी इस है एक हैक्टेयर जमीन के हिसाब ने अह पानी, कने इं खीरा दिखा गर्मियों जी अस अह उगाते भी हैं, पर फिर भी अगर तापमान 11 डिग्री से घट हो तो बीज जी ऐसे अंकुरित ही नहीं होंगे, जमना ही नहीं तीस, है ना।
0: जी जी
1: तो अगर खीरा अह लगाए हो तो तिस वास्ते 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना जी अस जरूरी आ, ताई जी अस बीज अस अगे अंकुरित होना, कने जो पुआजा जी अस भी खरा मिली आना भी आया।
0: बिल्कुल दिखा खीरे ताई जे ऐसा जमीन जे इस है दोमट मिट्टी वाली जे ऐसा होना चाहिए यही, कने इस सोगी जल निकास भी अच्छा होना चाहिए यही या
1: जी
0: भूमि दा अनुकूलतम या पीएच मान जे ऐसा है 5.5 कने 6.7 तक मन्ने जांदा ही या, कने भूमि जो तैयार करने ताई जे ऐसा 3-4 बारी जे इसे गहरी जुताई जरूर कर लेनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, कने दिखाती जे अहाँ खेत रच जे आसे खीरा बाईते भी आया तो इसके बाद जे आसे अहाँ दाएँ करने तीदी देख रेख करनी देड़ा नहीं करना भाई खीरा खेत रच बाईत्या कने इसके बाद जे आसे बात ही नहीं पूछी पचाट ने जे आसे दिखे नहीं आ क्योंकि बेल बलाए वाली जड़िया फसल होंगे इन्हों का फैलाव बड़बर ज्यादा होंगे खरे एरिए जी आए फैली आदि भी हैं कई बार इन्हें खरपतवार जे सह भी निकली आते भी हैं कने बेल जो होंगे स नाजुक जी होंगे जरा कर बिठे लगो तो टूटी आदि भी हैं तो इन्हों की देख रेख जी आस है बड़ी जरूरी होंगी भी कने तीन जे गां फल लगना है या फूल लगना उस टाइम जे अस हम जो बड़िया गल्ला जे इसे ध्यान रखना पैंदियां भी हैं
0: बिल्कुल ठीक ला दे हैं दिखा भाई आ सावधानी जे असें एड़ा रखना ही है कि क्यारियां जो साफ सुथरा रखना ही है कने खरपतवारा जो जे असें टाइम टाइम पर जे असें उखाड़ देना ही है कने फलां कने पत्तियां जो जे असें जमीना की सतह पर जे असें नहीं छूने देना ही है ताकि तिना जो खराब होने से जे असें हम बचाई सकते हैं
1: बिल्कुल यानी कुछ डंडे की सहायता से जे अस अहाँ बेल जे असें खडेर देनी भी हैं तीन पहले बोले भाई तन अह बनाए सकते भी हैं छम्मण पाए सकते भी हैं रुख डाल होने तिना पर अह बेल जी असें चढ़ाई देंगे भी हैं क्योंकि बेल जमीना पर पे दिया रही तो बीमारियां भी लगनिया कने कीड़े मकोड़े भी लगने कने तल जे बेली पर फुल आना जे ऐसा शुरू हो जाता भी है तीन जे अह पहले मनिया बाहते भी हैं खीरे ना फिर तिना पर फुल आना शुरू हो गया तो इस टाइम अह यह ध्यान रखना भी फल मक्खी जी ऐसे तिना फुल नेड़े नहीं हो कई बार फल मक्खी जी इस फसल जो लगी आती भी तो फुल अंदर ही बंद हो जाती फिर गांह फल जी इसे सड़ी दे ही होंगे भी हैं या आड़े तेड़े ही होंगे हैं मौसम की तो चलो मार हूँ ये तिस्ते अह फसल जो बचा ही सकते बाकी तो कुछ नहीं कर सकते भी हैं पर अगर अह फिर भी सावधानी बरतन फल मक्की जे ऐसे फसल बचा दी ट्रैप वगैरह जे ऐसे टाइमली लगाए दिन
0: जी जी
1: तो अहमदी फसल जो इसे बची सकती भी
0: बिल्कुल कहने दिखा भाई शुरुआती अवस्था में जे ऐसे अह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर च दर्द के जे अस 10 से 15 दिनों के अंतराल छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक कई रोगों से जे अस अह की फसल जी से बची रहती है
1: जी बिल्कुल कने अगर अह जो लगो पे तीन जे पत्रा पर हल्के सफेद रंगा के धब्बे जे इसे पौधे भी हैं तो इसका मतलब होंगे भाई जीवाणु जनित रोग जी अस लगी यदा भी है कने हौले हौले ये धब्बे जे फैली आते भी हैं कने पत्र जे इस सुकी आते भी हैं
0: जी
1: तो शुरुआती अवस्था च जे अस अह जो यदा प्रावधान जी अस करी लेना चाहता है ना
0: जी जी
1: ताकि फसल जे ऐसे बर्बाद नहीं हो दिखा कोई भी बीमारी अगर फसल जो लगो जो शुरुआत से अह जो पता लगे हो भाई ये बीमारी अह दी फसल जो लगी दी कने तीदा प्रबंधन जे अस अह तिथि कर दी ना तो अह दी फसल जी ऐसे बची सकते
0: बिल्कुल कने काफी अच्छा फुआजा जे ऐसे हां जो फसलों से मिली आंदा ही है अगर हां टाइम रहंदे ही तिना दी देखभाल हां करगे
1: बिल्कुल कने जे खेतरा बाय ने आई आना कने फिर हटने है फसल दिखनी नहीं तिसची खादी नहीं पानिया भी अन्न खरपतवार नहीं निकालने अन्न तो फिर है पुआजा मिलने की बजाय जी ऐसे नुकसान हो जाता भी
0: बिल्कुल जी तो दिखा पे कार्यक्रम जैसे सुनी लेना एक बांका जी लोक गीत
1: जी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृहमंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MCC-C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई। कोलकाता की ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला

0: का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत।

विवाह फिल्म से ये भजन आपने सुना, पमेला जैन और साथियों ने इसे गाया था। अब आइए सुनते हैं अगला भक्ति गीत, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म है अम्बा।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: भक्ति संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम के आखिर में अब आइए सुनते हैं सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये भक्ति गीत। फिल्म है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।

0: इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:26 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रौनका गराइंदियां।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:43 होने को है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा,
2: इसमें क्या होगा? इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
4: हाँ,

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पंजाब के राज्यपाल से भेंट, दोनों राज्यों से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाहें फैलाने का लगाया आरोप। प्रदेश में एंटी चिट्टा दिवस के मौके पर हुए कई जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को दिलाई गई नशा विरोधी शपथ। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज से शुरू। और शिमला जिला के रामपुर क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लंबित व कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़ में उसका 7.19% का वैधानिक हिस्सा प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक अतिरिक्त हिमाचल सदन के निर्माण की आवश्यकता का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई दशक पहले बना वर्तमान हिमाचल भवन अब राज्य के लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से संबंधित लंबित पड़ी देनदारियों के जल्द निपटारे को लेकर भी विचार विमर्श किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार का अधिकार व पारदर्शिता, काम का भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान हैं और इसके अलावा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खत्म हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जी राम जी योजना 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के नाम पर झूठ बोलकर प्रदेश के हितों को दांव पर लगा रही है। जयराम ठाकुर ने सरकार को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की दिशा में कार्य करने की सलाह दी है। प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी निवारण दिवस को एंटी चिट्टा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा में बताया कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष से एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे जैसी सामाजिक बुराई के नाश के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। इस दौरान एंटी चिट्टा जागरूकता रैली को भी रवाना किया गया। इस बीच नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शिमला में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और नशा तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
1: हिमाचल प्रदेश में चिट्टे को लेकर विशेष अभियान चलाया है और वाकाथोन के जरिए, बहुत सारे सेमिनार्स के जरिए और यहाँ तक कि कानून भी जो है बदला गया है हिमाचल, और इसको बड़े सख्ती से किया गया है। पूरे प्रदेश के पंचायतों में मैपिंग की गई है कि कहाँ पर इसका ज्यादा मेनेंस है। इसमें जो है बहुत सारे कदम उठाए गए, खासकर जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिसमें पुलिस विभाग के लोग भी शामिल पाए गए, उन सबके ऊपर कड़ा जो है संज्ञान लेकर कड़े फैसले लिए गए, उनको नौकरियों से भी निकाला गया है। तो हिमाचल प्रदेश में नशे को लेकर सरकार चिंतित है और खाली चिंता ही नहीं बल्कि इसको कैसे मतलब इस मेनेंस को दूर किया जाए, उसके लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
0: एक अन्य कार्यक्रम में कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इस अभियान में उपायुक्तों की परफॉर्मेंस भी आंकी जाएगी।
2: दो चीजें की जा रही हैं, एक जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी है उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस तरह से नंबर दिए जाएंगे।
0: इस अवसर पर प्रदेश के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने परंपरा के अनुसार मां शूलिनी की पालकी का विधिवत स्वागत किया और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। धनीराम शांडिल ने कहा कि मां शूलिनी को समर्पित ये उत्सव समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचायक है। शूलिनी मेले के सफल आयोजन के लिए सोलन जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। इस मेले के दौरान होने वाली सांस्कृतिक संध्याएं, खेल व अन्य गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। शिमला जिले में रामपुर क्षेत्र के उरमण में आज एक पिकअप की गहरी खाई में गिर जाने से मां और बेटे सहित 6 लोगों की मृत्यु हो गई। शिमला पुलिस ने इस हादसे की पुष्टि की है। मृतक आनी तहसील के कवाणु व रामपुर तहसील के छलटा, पाठ और शरनाल गांव से संबंधित बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट परियोजना की भूमि अधिग्रहण का करीब 85% कार्य पूरा कर लिया गया है और सभी भूमि अधिग्रहण अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। प्रशासन द्वारा अब जल्द ही अधिग्रहित भूमि का भौतिक कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांगड़ा पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि प्रभावित परिवारों के राहत व पुनर्वास की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत पुनर्वास व पुनर्स्थापन सहित अब तक करीब 2200 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रभावितों को वितरित की गई है।
3: अभी तक बजट इंक्लूडिंग रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट का है, वो जो वन टाइम सेटलमेंट में अभी तक हुआ है ऑलमोस्ट 2200 करोड़ के आसपास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और जो अलग कैटेगरीज में फैमिलीज आती हैं, जैसे प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज है, वो 942 के आसपास की संख्या जो थी वो पहले थी, अब उसमें जो है वो कुछ काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं, उसको लैंड एक्विजिशन कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर R&R के लेवल पे जो है देखा जाना है। और जब वो क्लेम्स सारे सेटल हो जाए उसके बाद एक्चुअल फिगर जो है वो उसके हिसाब से आगे जो कंपनसेशन का है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा।
0: प्रदेश भर में आगामी रविवार 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान में 5 वर्ष तक की आयु के 5,94,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इस अभियान के लिए प्रदेश में 4,753 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियां पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पिछले कल कसौली के नेरीकला में मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा पर मोर्चा की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने कहा कि महिलाएं सरकार के वादों और वास्तविकता के बीच का अंतर भली भांति समझ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना को कसौली विधानसभा क्षेत्र की 5 पंचायतों की महिलाओं तक ही सीमित कर दिया है और इलाके की शेष पंचायतों की महिलाओं को इससे वंचित रखा जा रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज शिमला जिले के सुन्नी में पौधरोपण किया गया। पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मातृ सम्मान का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और दोपहर बाद से कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापक वर्षा हुई है। इसके अलावा राज्य के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस वर्षा से किसानों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पंजाब के राज्यपाल से भेंट, दोनों राज्यों से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर विकसित भारत जीराम जी योजना को लेकर अफवाहें फैलाने का लगाया आरोप। प्रदेश में एंटी चिट्टा दिवस के मौके पर हुए कई जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को दिलाई गई नशा विरोधी शपथ। सोलन का 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेला आज से शुरू और शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
5: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
4: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
5: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:56 हुए हैं।
7: कश्मीरी सन ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स, अपर बाजार, हमीरपुर। 145 सालों से कश्मीरी सन ज्वेलर्स के गहने आपकी खुशियों और हर खास मौके की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर अवसर के लिए कुछ खास है। गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन ज्वेलर्स। संपर्क करें 9418003636।
8: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
8: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
10: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
8: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
10: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
8: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।
1: श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर।

0: पति के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट करनी ही होगी।
1: अच्छा आप बैदी भाई आइटम 7 और 14 पर क्या कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते
0: हैं? हाँ, अच्छा पहले ये बताइए कि आपकी मित्र मंडली की मेरे प्रति क्या राय है?
1: अजी लोग सिर धुनते हैं।
0: मैंने राय पूछी थी, ये नहीं पूछा था कि सिर धुनते हैं या रुई।
1: वही तो मैं बता रहा हूँ श्रीमती जी कि लोग ये कहते हैं कि भगवान यदि अगला जन्म होता तो हमें चाहे कानी लूली लंगड़ी कैसी भी बीवी मिले मगर मिले कमाऊ।
0: आज जब मैं सर समझ कर आपके साथ निकलती हूँ तब
1: लोगों की नजर मेरे बजाय तुम पर टिकी रहती है।
0: ये सच है ना?
1: जी हाँ बिल्कुल सच।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कारण तुम्हें मान मिलता है ना?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो फिर आइटम 7 में कटौती का अर्थ होगा कि मैं गंदी सलवट भरी साड़ियां पहनूं और मेरे दफ्तर की अन्य लड़कियों के मुकाबले।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, कभी नहीं। तुम्हारी साड़ियों आदि का ड्राई क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है।
0: तुम कितने अच्छे हो ना।
1: तुम भी तो कितनी अच्छी हो।
0: अच्छा तो आइटम 14 के अंतर्गत मेरे सौंदर्य प्रसादनों में कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं क्या आप?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रख रहे।
0: अच्छा तो इसका मतलब है मेरी तनख्वाह है 355 रुपए।
1: बिल्कुल ठीक।
0: और 7 रुपए हुए रद्दी के, कुल हुए 362 रुपए। और कटौतियां करने पर खर्च हुआ 360 रुपए 80 पैसे।
1: वाह वाह क्या बात कही है, मेरा बस चले
0: तो मुझे वित्त मंत्रानी बना दे। खैर तो आज से इसी योजना के अनुसार काम करने की घोषणा की जाती है।
1: चलिए मंजूर।
0: कौन है?
2: जी जी।
0: अरे मधु कब आए तुम?
2: अभी आए।
0: हाँ खबर तक नहीं दी,
2: सोचा अचानक पहुँच कर दीदी को चौंका दूंगी। दीदी जीजाजी कहाँ हैं?
0: अंदर गए हैं, अभी बुलाती हूँ। तब तक तू चल नाश्ता कर ले।
3: अरे भाई कौन आ गया है?
0: देखो तो कौन आई है।
2: नमस्ते जीजाजी।
3: जी नमस्ते। नमस्ते मधु, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक?
2: ठीक हूँ जीजाजी।
0: अरे मधु यहाँ एक फ्राई किया हुआ अंडा पड़ा था, मेरे चूहे ले गए क्या? तेरे जीजाजी के लिए रखा था।
2: दीदी वो तो मैं खा गई, जीजाजी के लिए और बना दो, मैं भी एक और लूंगी।
3: बात यह मधु अंडा एक ही आता है, वैसे मैं भी दो ही खाता था और वो तुम्हारी दीदी ने आज ही से।
2: अरे वाह दीदी, जीजा जी कमाते नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने खाना भी ना पतला था।
0: तू सोचती है वो बात नहीं है मधु।
2: बात कुछ भी हो दीदी, खाने पीने में कटौती।
3: यही तो मैं कहता हूँ मधु।
2: पर देखो दीदी कल मैं खुद जाकर 4 अंडे 2 डबल रोटी और 2 टिकिया मक्खन लाऊंगी, समझी?
3: जीजाजी
2: यहाँ पिक्चर कौन कौन सी चल रही
0: है? अरे सब ऐसी है तेरे देखने लायक नहीं है।
2: ठीक है जैसे भी है दीदी, अभी जब अपन ड्राई क्लीनर्स के कपड़े देने चलेंगे तो लौटते समय एडवांस टिकट ले आएंगे, क्यों जीजाजी?
3: बिल्कुल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मधु, सब ठीक हो जाएगा।
2: अच्छा दीदी आप दोनों तय करो कि कौन सी पिक्चर चलनी है, मैं भी नहा के आई।
0: हो गई अपनी बचत योजना चौपट।
3: डार्लिंग मधु कोई 10-20 कपड़े तो रोज धुलवाएगी
0: और 10 दिन तक दुगने अंडे डबल रोटी और सब्जी आएगी।
3: और ये जब जाएगी ना तभी से सलवार कुर्ता भी भेंट करना।
0: हाय 40 का घाटा था ही साकार हो जाएगा।
4: आज हवा महल में आप सुन रहे थे मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। आकाशवाणी जयपुर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में समीर का लिखा गीत। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद और फिल्म का नाम है सुहाग।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक, उदित नारायण, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में समीर के बोलों को संगीत से सवारा है विजू शाह ने। फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान और करसन सरगतिया की आवाजों में। गीत लिखा है तेजपाल कौर ने, संगीतकार हैं अनु मलिक, फिल्म का नाम है फिजा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है नितिन राय कवार ने, संगीत है संदीप चौटा का, फिल्म का नाम है मस्त।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज एट 9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: आपसे विदा लेने का, कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
4: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
3: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
4: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
3: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
5: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
3: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस 3-year विजन डॉक्यूमेंट for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikant and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth, and mothers to come together on a single platform to win this war. The Home Minister stressed that better coordination and the use of technology are essential for strengthening the country's campaign against drugs and drug trafficking networks.
8: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
7: Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said that the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes. He urged all chief secretaries and directors general of police to upload details of drug-related cases on these portals within a fixed timeline. He said that timely sharing of information would help the government to monitor cases more effectively and provide states with necessary feedback and suggestions to improve investigations and enforcement. The Home Minister also launched a drug disposal fortnight under which over 2,09,000 kilograms of seized narcotic substances valued at around 6,000 crore rupees will be destroyed. Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal today announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Addressing the 10th annual UK-India Week in London today, Mr. Goyal said that the India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology, sovereign AI, critical minerals, defence and clean energy. The minister said that India moved from the fragile five to being recognised as the world's biggest opportunity under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said that India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement is focused on bringing the best of both countries to each other.
9: The UK agreement is a template which is very comprehensive. It's not only about tariffs and rules of origin. It's not only about trade in goods and services. It's about collaborations in technology, in education, culture, the arts. It is focused on bringing the best of both countries to each other. It's a fair, equitable, very balanced agreement.
7: Talking to the media in London, Mr. Goyal said that his counterpart from the United States was in India for the last 3 days. He informed that they had extensive engagements and broadly, both are in agreement on most aspects of the trade deal. Global investment bank Goldman Sachs has raised India's real GDP growth forecast to 6.8% for the calendar year 2026 from its earlier estimate of 6.5%, citing easing oil prices and improving domestic economic conditions. In its latest report titled India, Improved Macro Outlook After the US and Iran Deal, the Global Investment Bank lowered its headline inflation forecast by 0.2 percentage points to 4.4% and reduced its current account deficit estimate to 1.1% of GDP amid a sharp correction in global crude oil prices after the US-Iran peace deal. Ministry of Health and Family Welfare has proposed amendments to the Drugs Rules 1945 to simplify the procedure for obtaining permission for import of drugs for examination, test or analysis. The ministry said that the amendment introduces an acknowledgement-based system for import of all drugs in small quantities for analytical and non-clinical testing purposes. The simplified procedure shall not be applicable to certain drugs belonging to the categories of sex hormones, cytotoxic drugs and beta-lactam drugs. The initiative is expected to provide a major boost to research and innovation in the country while facilitating more efficient and streamlined regulatory process. A court in Ayodhya today remanded all 8 accused arrested in alleged anomalies in the Ram Temple donation case to judicial custody till June 29th. The accused were presented before the local court following their arrest. K.C. Verma, prosecution officer at the Ayodhya Chief Judicial Magistrate Court, informed reporters that the remand was extended until Monday, June 29th, when the accused will be produced before the court again. Verma said that in total more than 79 lakh rupees, 85,000 was recovered from them, except for one accused, Subhash. Nothing was recovered from him, though he was involved in the conspiracy. Different amounts were recovered from the others. He added that the special court handling cases under the Prevention of Corruption Act was not in session as it was a non-working day, resulting in the remand until Monday. The accused include public servants, government salaried personnel and several employees from the State Bank of India, with about 5 or 6 individuals from SBI among them. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIN News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Venezuela, death toll in 2 powerful earthquakes has risen to 589. Nearly 3,000 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In capital Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, several people are still feared trapped under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude one, both occurring close to the surface, making destruction more severe. The country's interim president, Elsie Rodriguez, has declared a state of emergency. A report.
10: Venezuela's interim president, Rodriguez, has acknowledged India's solidarity following the earthquakes, stating that it aligns with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed Prime Minister Narendra Modi's remarks, in which he expressed condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the earthquake's severe consequences. Earlier, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar announced Operation Amistad, under which two Indian Air Force MCC C-17s took off today for Venezuela with urgent assistance to support post-earthquake relief efforts. He stated that India is committed to support the government and people of Venezuela in this difficult time. Amistad means friendship in Spanish. The assistance contains an Indian Army field hospital unit and over 35 tons of relief supplies, medicines and medical equipment, including two Bhishma cubes. Reshma Tiwari, News Desk.
7: U.S. Vice President J.D. Vance has confirmed that the U.S. and Iran have agreed to set up a direct deconfliction channel with military representatives from both countries. The arrangement involves representatives from Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and the U.S. Army's Central Command being stationed in Doha, Qatar. Mr. Vance said in an interview with a British news site that Tehran and Washington have agreed to set up a direct channel in order to reduce the risk of further conflict. Meanwhile, the United States and the Gulf Cooperation Council today reaffirmed their strategic partnership at a ministerial meeting in Bahrain's Manama, underscoring their commitment to regional security, diplomacy with Iran, stability in Syria and Lebanon, and reconstruction efforts in Gaza. Meanwhile, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, Navy, today said commercial vessels transiting the strategic Strait of Hormuz must use routes approved by Tehran, despite the IRGC establishing a communication line with the U.S. Central Command. Iranian state media reported that the Islamic Revolutionary Guard Corps warned that navigation outside designated routes would not be permitted. Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi said safe passage through the waterway could not be guaranteed without coordination with Tehran. The Ashura-e-Muharram was observed with due reverence and solemnity in various parts of the country today. The day marks the martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Hazrat Imam Hussein, and his devoted companions who laid down their lives for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Taziyah processions were taken out to mark the occasion, which were buried later in the evening at designated places. Majlis or religious meetings were also organized where ulemas highlighted various aspects of Karbala incident. Elaborate security arrangements had been made on the occasion. The India Meteorological Department has said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into more parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. Northeast India, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim will experience heavy to very heavy rainfall during the week. A report.
11: The Met Department has predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Keralam, Mahe, Konkan, Goa, North Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for the next 3 days. Parts of Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, East Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttarakhand and Lakshadweep are expected to experience thunderstorm and lightning till Monday. Meanwhile, heat wave conditions are expected over isolated places over Uttar Pradesh till Sunday. With Rishu Jaiswal, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
7: In Arunachal Pradesh, search and rescue operations for the four missing persons suspected to have been washed away in the flash flood on 24th of June concluded today without success. The operation was carried out around the affected Yazali Neepko colony and the reservoir. 23 SDRF Jawans, in association with the local people, ex-servicemen, police personnel searched the entire area. The team also helped to remove the debris from the flood-affected Neepko colony. The district administration said 30 houses completely washed away in the flash flood and another 52 houses damaged in the colony. On to sports. Indian shooters have ended their campaign at the IISSF Junior World Championship in Germany as table toppers with 24 medals, including 7 gold. They performed brilliantly in the pistol and rifle events, bagging 7 gold, 8 silver and 9 bronze, leaving behind the individual neutral athletes who claimed 14 medals and Italy at third position with 10 medals. In badminton, India's Ronak Chahan created the biggest upset of the US Open tournament in Fullerton today when he packed off world number 6 and men's singles top seed Shou Tian Zhen of Chinese Taipei in straight games 21-17, 26-24 to reach quarters. In another men's singles, Kidambi Srikanth registered a 21-14, 21-13 win over Li Zijia of Malaysia to enter quarterfinals. In women's singles, Tanvi Sharma, Rakshita Shree and Devika Sehag also advanced to the last 8 stage, winning their respective matches. In men's hockey, India will face arch-rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. In men's cricket, hosts Ireland have set a target of 183 runs for India in the first T20 international match of the two-match series in Belfast. Put into bat, Ireland scored 182 for 9 wickets in stipulated 20 overs. In reply, India were 129 for 6 in 15 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. And in US Open badminton, India's Ronak Chahan stuns top seed Shou Tian Zhen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. That is all in the news at 9. Good night.
12: बंद दरवाजों पर दस्तक देती है
13: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम अंदर शायर पैदा हो रहा था मैं रूम पे गया और लेट गया मेरे बाजू में रेडियो था एक गजल बज रही थी दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में
12: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी
14: एक टुकड़ा धूप का
12: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी
13: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी
12: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
0: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और मुबारक बेगम की आवाज़ों में वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने संगीत है शंकर जयकिशन का फिल्म का नाम है हमराही

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है मुगले आजम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी मन्नाडे और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फ़िल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो राजा।

0: मैं डटक रहता मैं आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुम लो चुम लो
0: आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुम लो चुम लो।
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

आपत्ति दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैया राजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे और इस तरह से इलैया राजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैया राजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहाँ वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजल गल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलनथे, 1982 में कोजू कुवथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू

0: फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है।

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताभ, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

कृपया राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे, तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और एलिया राजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में एलिया राजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल है।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। कर रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत। आइए सुनते हैं देशराग। स्वर है जसराज पंडित का, हारमोनियम वादन अप्पा जलगांवकर कर रहे हैं और तबले पर संगत दे रहे हैं केदार पंडित।

अब आइए सुनते हैं राग दरबारी। सरोद वादन है अमजद अली खान का और तबले पर संगत दी है शफात अहमद खान ने।

इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के आज के इस प्यार भरे सफर की आइए करते हैं शुरुआत।

ज़िंदगी की सबसे हसीन यादें अक्सर उन लम्हों में बसती हैं जहां दिल सिर्फ एहसासों की भाषा समझता है।

कुछ एहसास शब्दों से नहीं दिल की धड़कनों से बयां होते हैं, और वही पल जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन जाते हैं।

कुछ लम्हे सिर्फ गुजरते नहीं, दिल में उतर जाते हैं और उनकी खूबसूरती मुस्कुराने की वजह बन जाती है।

0: चांदनी रातें कार्यक्रम का आज का ये सफर अब इसी के साथ संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: 11 बजने को है, लीजिए अब सुनिए समाचार।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधान

0: मंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।